0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: मेरे सारे विरोधी वक्तव्यों के बावजूद ही अगर तुम मेरे साथ हो तो ही मेरे साथ हो। इसलिए मैं तुमसे ये भी कह दूं कि मेरे इतने विरोधी वक्तव्यों के पीछे बहुत बहुत कारण हैं। उनमें एक ये भी है कि जो इनके बावजूद मेरे पास होंगे उनको ही मैं चाहूंगा कि मेरे पास हो। जो इनके कारण हट जाएंगे उनकी बड़ी कृपा, उनके पास होने का कोई मूल्य न था। भीड़ बढ़ाने से तो कोई प्रयोजन नहीं, वे समय ही खोते, अपना भी मेरा भी, वे जगह ही भरते। अच्छा हुआ हट गए। दो तरह के लोग हैं। सभी जीवन की घटनाएं दो हिस्सों में बटी होती हैं। मेरे करीब हजारों आने वाले लोगों में जब पुरुष मेरे पास आते तो कहते हैं आपके विचार हमें अच्छे लगते, इसलिए आपसे नाता बनाते। स्त्रियां जब मेरे पास आती वो कहती हैं आप हमें अच्छे लगते, इसलिए आपके विचार भी अच्छे लगते। और ऐसा स्त्री पुरुष का विभाजन बहुत साफ सुथरा नहीं है। बहुत से पुरुष हैं जो स्त्रियों जैसे हृदयवान हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जो पुरुषों जैसी बुद्धिमान हैं। बुद्धि कहती है विचार अच्छे लगते, इससे आपसे लगाव है। हृदय कहता है आपसे लगाव है, इसलिए विचार भी अच्छे लगते। अब थोड़ा सोचो, जो विचार के कारण मुझसे लगाव बनाया है, कल अगर विचार ठीक ना लगे, और ऐसे में हजारों मौके लाता हूं जब विचार ठीक नहीं लगते। मेरे पास बहुत से गांधीवादी लोग थे, फिर मैंने उनसे छुटकारा चाहा। गांधी से कुछ लेना देना ना था, लेकिन गांधीवादियों के कारण गांधी के विपरीत बोला, वो भाग गए। जो उसमें से बच गए उन्होंने सबूत दिया कि उनका नाता मुझसे है। मेरे पास जब मैं गांधी के विपरीत बोला तो सारे मुल्क के समाजवादी, साम्यवादी, उनकी भीड़ बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट जो मुझे कभी सुनने ना आए थे वो आने लगे। फिर जब मैं समाजवाद के खिलाफ बोला वो भाग गए। उसमें से कुछ रुक गए, जो रुक गए वही मूल्यवान थे। निरंतर मैं ये करता रहा हूं, निरंतर मैं ये करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारण ही मेरे पास हो, कोई और इतर कारण नहीं, ये संबंध सीधा है, तो ही तुम्हारा यहां होना उचित है, अन्यथा तुम किसी और की जगह घेर रहे हो। खाली करो, कोई और वहां होगा, कोई और लाभ ले लेगा, तुम द्वार पर भीड़ मत करो। अफसोस तुम यहां हो, इसे भूलना मत, इसे सतत स्मरण रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इसे भी तुम समझ लो कि मैं गांधी के खिलाफ बोला, तुम गांधीवादी थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई अड़चन न हुई और तुमने सोचा कि हमारा तो प्रेम का नाता है। मैं समाजवाद के खिलाफ बोला, तुम समाजवादी कभी थे ही नहीं, तुमने कहा हमें इन विरोधी वक्तव्यों से कुछ नहीं लेना, हमारा तो प्रेम का नाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारी जड़ पकड़ ही लूंगा, तुम ज्यादा देर ना बच पाओगे। कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे मत, तुम्हारे शास्त्र पर हमला करूंगा ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे शास्त्र से मुक्त ना करूं, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना कर पाऊंगा। जब तक तुम तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना हो, तब तक अहंकार के नीचे का आधार ना हटेगा, तुम्हारा भवन गिर ना सकेगा। तो मैं खोजे चला जाता हूं, मेरे साथ आखिर में जो बच रहेगा, सभी झंझावातों को सहकर, सभी आंधियों को सहकर, वो परीक्षा में पूरा उतरा। अगर तुम्हें होश हो तो कोई कारण नहीं कि तुम भी परीक्षा में क्यों ना पूरे उतर जाओ, लेकिन जब तुम्हारे मत पे चोट पड़ती है तब होश खो जाता है, तब आदमी बेचैन हो जाता है, क्योंकि ये मानना कि तुम कोई गलत चीज मानते थे बड़ा मुश्किल होता है। तुम इतने बुद्धिमान और किसी गलत चीज को मानते थे? तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पर शक नहीं आता, और धार्मिक व्यक्ति का वो बुनियादी लक्षण, जिस बुद्धि को अपने पर शक आ गया वो धार्मिक हो गई, क्योंकि जिसे अपने पे संदेह आया उसने ही अपने को बदला। संदेह ही ना तो बदलोगे क्यों? जिसने पहचाना कि मैं रुग्ण हूं, वही चिकित्सा की खोज में चला, औषधि की तलाश की। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा है कि मनुष्य के मन में झांक कर देखने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य समाज में मैत्री, प्रेम और दयादान के कृत्य भी होते हैं। कृपा पूर्वक बताएं कि मनुष्य की वृत्तियों में कौन ज्यादा बुनियादी और बली है, प्रेम या घृणा, हिंसा या अहिंसा, सुख या दुख। इस तरह सोचना कि कौन ज्यादा बलवान है, प्रथम से ही गलत प्रश्न उठा लेना है, और अगर गलत प्रश्न पूछ लिया तो फिर उत्तर गलत होते चले जाते। कहते हैं अच्छे होटलों में बैरा ये नहीं पूछता कि आप चाय लेंगे या नहीं, बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी। फर्क समझे आप? अगर बैरा पूछे आप चाय लेंगे या नहीं, तो 50 मौके नहीं के, 50 मौके चाय के। बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी, तो 50 मौके चाय के हैं, 50 मौके काफी के। आपको छूटने का मौका नहीं दे रहा है, आपको नहीं कहने का अवसर नहीं दे रहा है। इसलिए पश्चिम में तो विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि ग्राहक से कैसी बात करनी, क्या कहना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर उसका उत्तर निर्भर करेगा। अगर तुम खुद ही 50% ना कहने का अवसर दे रहे हो तो तुम काहे के विक्रेता, तुमने आधी दुकान तो बर्बाद कर दी, आधा काम तो तुमने धंधा खराब ही कर लिया। ये तुमने गलत जगह से पूछ लिया, नहीं ऐसा पूछना ठीक नहीं। मनुष्य जाति बहुत से ऐसे प्रश्नों से पीड़ित रही है जो गलत जगह से पूछे गए, बस एक दफा पूछ लिया कि झंझट खड़ी हो जाती। और हमारी आदतें सिखाने की, हमें सिखाया गया हां और ना की आदतें, अंधेरा और उजेला, रात और दिन, मौत और जिंदगी, हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। जिंदगी दो हिस्से में बटी नहीं है, जिंदगी तो सतरंगी है, इंद्रधनुष जैसी है। अब तुम पूछो इंद्रधनुष सफेद के काला तो क्या कहें, इंद्रधनुष ना काला ना सफेद, इंद्रधनुष सतरंगी है। तुम्हारे काले सफेद में प्रश्न बनते ही नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी तुमसे पूछे कि हां और ना में जवाब दे दें, अपनी पत्नी को अब भी पीटते हैं या नहीं, अगर कहो हां तो उसका मतलब अभी भी पीटते हैं, अगर कहो नहीं तो उसका मतलब पहले पीटते थे। उसने छोड़ा ही नहीं अवसर। यह भी हो सकता है कि आप पीटते ही ना हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अहिंसा या हिंसा, प्रेम या घृणा, क्रोध या करुणा, ये जीवन को बांटने का गलत ढंग है। जीवन सतरंगा है, हां और नहीं में बटा हुआ नहीं। हां और नहीं के बीच बहुत सी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। यहां बहुत मात्राएं हैं, यहां ऐसी भी जगह है जहां ना घृणा न प्रेम, उपेक्षा, उपेक्षा भी है। और यहां ऐसी भी घड़ियां हैं जहां घृणा भी और प्रेम भी, दोनों साथ साथ। मनस्वित कहते हैं तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को साधारणता घृणा भी करते हो, इसलिए तो पति पत्नी के इतने झगड़े चलते, जिससे प्रेम उसी से घृणा। अब तुम उनसे कहो इतना झगड़ा चलता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते, तुम बात ही गलत कर रहे हो, प्रेम भी है, छोड़ तो सकते ही नहीं, न छोड़ सकते हैं न साथ रह सकते। पति पत्नी का संबंध ऐसा संबंध है कि बिना भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। पत्नी दूर चली जाती तो याद आती है, पास चली आती है तो छुटकारे की कामना पैदा होने लगती है। अगर तुम जीवन को सीधा सीधा देखो, लेकिन अगर तुमने गणित से बांध लिया, तुमने कहा कि बात सीधी साफ करो, अगर पत्नी से लगाव है तो ठीक साथ रहो, अगर लगाव नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म करो। काश जिंदगी इतनी सीधी सीधी होती, ऐसा अंधेरे उजेले की तरह जिंदगी बटी होती। बटी नहीं है जिंदगी, बड़ी मिश्रित है। तुम अगर किसी से पूछो ठीक ठीक कहो प्रेम या घृणा, तो वो भी कहेगा, वो कहेगा पक्का करना मुश्किल, कभी घृणा भी होती कभी प्रेम भी होता। सुबह घृणा होती शाम प्रेम हो जाता। खोजने से पता चला है कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए गलत प्रश्न से शुरुआत हम न करें। जीवन में जहां जहां अति दिखाई पड़ती हो वहां समझ लेना कि बीच में सेतु भी होगा। रात भी कहीं दिन से अलग है, मौत कहीं जिंदगी से अलग है। मौत कहीं जिंदगी के बाहर थोड़ी घटती, जिंदगी के भीतर ही घटती। मौत आने के पहले मर थोड़ी जाते हो, जिंदा ही रहते हो। जब मौत आती तुम्हें जिंदा ही पाती, ऐसा थोड़ी कि पहले मर गए फिर मौत आती। मौत जिंदगी के भीतर है, बाहर नहीं। और मौत जिंदगी के विपरीत भी नहीं, क्योंकि तुम हटते हो तो किसी के लिए जगह खाली करते हो, कोई और जिंदा हो पाता है। बूढ़ा मरता है तो बच्चा पैदा हो पाता है। पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते निकल आते हैं। पुराने पत्ते ना गिरे तो नए पत्ते ना निकलेंगे। तुम थोड़ा ऐसा सोचो, तुम्हारे बुजुर्ग अगर न मरते तो तुम नहीं हो सकते थे, तुम हो क्योंकि उनकी बड़ी कृपा थी, वो मर गए। अगर वो बने ही रहते और अड्डा जमाए बैठे रहते तुम कहां होते। वैज्ञानिक कहते हैं जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें दबी हर स्थान पर, इतने आदमी हो चुके। तुम थोड़ा सोचो, कोई मरता ना तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती। सब बूढ़े, जरा सोचो तो, कौरव पांडव से लेके सब ऋषि मुनि, सब राक्षस, सब बैठे पृथ्वी पर, तुम भी आ गए। वो गला घोंट देते तुम्हारा, तुम्हारे लिए जगह कहां थी। तुम हो सके हो क्योंकि कोई नहीं हो गया। किसी के नहीं होने से तुम्हारा

होना जुड़ा है। अब अगर तुम बहुत जिद करोगे कि मैं सदा ही बना रहूं, तो तुम दूसरों के होने में बाधा बन जाओगे। जब तुम्हारा मौका आए तुम हट जाओ ताकि दूसरे हो सके। जीवन मौत के साथ साथ चल रहा है। मौत जीवन का ही उपाय है, मौत जीवन का ही हिस्सा है। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि विरोधी जुड़े, फिर जीवन के संबंध में कई बातें साफ हो सकती। पूछा है कि बुनियादी कौन है, बलि कौन है? कोई भी नहीं, दोनों साथ साथ हैं। और अगर छोड़ना हो तो दोनों ही छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए तो भारत के मनुष्यों ने कहा कि अगर तुम्हें मौत से बचना हो तो जीवन का त्याग कर देना होगा। इसको तुम थोड़ा सोचो इस तरह से। बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मौत से छुटकारा हो जाए तो जीवन से छुटकारा चाहिए। जब तक तुम जीवन को पकड़ोगे मौत भी आती ही रहेगी। तुम्हारे जीवन को पकड़ने में ही तुमने मौत को निमंत्रण दे दिया। जीवेशणा मौत को लाएगी और जीवन और मृत्यु का चाक घूमता रहेगा। तुम जीवन को छोड़ो मौत अपने से छूट जाती। तुमने सम्मान चाहा तो अपमान आता ही रहेगा। तुम सम्मान छोड़ो अपमान अपने से छूट जाता है। तुमने कुछ परिग्रह करना चाहा तो तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी खोने का दुख झेलना ही बता है। तुम खुद ही छोड़ दो फिर तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। पकड़ोगे तो छूटेगा, न पकड़ोगे तो छूटने की बात ही समाप्त हो गई। इसलिए पूरब की सारी मनीषा एक बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि दुख मिट जाए तो सुख का त्याग कर दो। इसमें विरोध का नियम काम कर रहा है। तुम चाहते हो सुख तो बच जाए और दुख का त्याग हो जाए, तुम असंभव की कामना कर रहे हो। इसका यह अर्थ हुआ, अगर तुम जीवन से घृणा के रोग को छोड़ देना चाहते हो तो जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे भी छोड़ दो। तब तुम्हारे जीवन में एक निष्कलुषता आएगी जिसमें न तो प्रेम होगा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो नहीं होगा, जिसे तुम घृणा कहते हो वो भी नहीं होगी। कुछ नई ही गंध होगी, कुछ नई ही बात होगी, तुम्हारी भाषा में कहीं भी ना आ सके ऐसी कुछ बात होगी। अनिर्वचनीय कुछ होगा, अव्याख्य कुछ होगा। कुछ नए शब्द खोजने पड़ेंगे। इसलिए हम बुद्ध को प्रेमी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम तो बिना घृणा के हो नहीं सकता। इसलिए हमने उनको करुणावान कहा, जरा सा शब्द अलग किया। लेकिन करुणावान भी कहना क्या ठीक है, क्योंकि करुणा भी क्रोध के बिना नहीं हो सकती। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि बुद्ध के लिए तुम्हारी भाषा का कोई भी शब्द लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी शब्द तुम उपयोग करोगे उससे विपरीत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम बुद्ध को त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि त्यागी वो तभी हो सकते हैं जब भोगी हो। तुम उनको ज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानी वो तभी हो सकते हैं जब अज्ञानी भी हो। तुम उन्हें सन्यासी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी वे तभी हो सकते हैं जब संसारी भी हो। फिर क्या कहो? इसलिए शास्त्र कहते हैं उस संबंध में चुप ही रहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस संबंध में मौन ही वक्तव्य है। तो पहली तो ये बात कि दोनों साथ साथ हैं, बराबर वजन के, न तो घृणा ज्यादा है न प्रेम ज्यादा है। और दूसरी बात, जीवन के प्रतिपल में स्थिति बदलती रहती। जब तुम जवान होते हो तब मोह ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। प्रेम ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। भोग ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। फिर तुम ही बूढ़े हो जाओगे और त्याग की भाषा बोलने लगोगे, वो बुढ़ापे का भ्रम है।
इसलिए बूढ़े और जवान में बात बड़ी मुश्किल है, वो अलग अलग भाषा बोलते। बूढ़ा कहता है ये सब सपना है जो तुम बातें कर रहे हो। जवान कहता है ये सब पराजय की बातें, तुम्हारा हारा थकापन। अब तुम बूढ़े हो गए, मौत करीब आ रही है, तुम मौत से घबरा गए हो। बूढ़ा आस्तिक हो जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, जवानी नास्तिक है। जवानी अपने सिवा किसी को भी मानना नहीं चाहती। जवान कहता है बूढ़ा मौत से डर गया इसलिए ईश्वर को मानने लगा, भयातुर है, ये भगवान सब भय से पैदा हुए। और बूढ़ा कहता है ये जवान अभी अंधा है, जवानी अंधी है, और अंधे को सब जगह हरा हरा सूझता है। ये सब उतर जाएगा नशा, ये सब नशा है, तो अकल आएगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं ना तो जवान को अकल है ना बूढ़े को। अकल का इससे कोई संबंध ही नहीं जवानी और बुढ़ापे से। जब तक तुम अपने भीतर ऐसी जगह ना खोज लोगे ना जो जवान है ना बूढ़ी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि का बुद्धि की किरण नहीं हो सकती। जवान जवानी से परेशान है और जवानी की भाषा बोल रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे से परेशान है, बुढ़ापे की भाषा बोल रहा है। हालांकि बूढ़े को लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, जवान को भी यही लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। इसलिए तो पीढ़ियों के बीच एक दरार पड़ जाती, बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। बाप बिल्कुल भूल चुका कि वो भी कभी बेटा था और जवान था और इसी तरह की मूढ़ता की बातें उसने भी की थी, वो भूल ही जाता। मूढ़ता की बातें लोग याद ही नहीं रखते, और जवान भी ये भूल जाता है कि ये बाप भी कभी जवान था फिर बूढ़ा हुआ है। मैं आज जवान हूं, कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसकी बात को ऐसे ही ना ठुकराऊं। ये आज नहीं कल मेरे जीवन में भी आने ही वाली है, इसका ऐसा तिरस्कार ना करूं। लेकिन नहीं, जवान भी अंधे, बूढ़े भी अंधे। आंख तो उसके पास होती जो अपने भीतर उस धारा को खोज लेता है जो समय के बाहर है, न जो जवान है न जो बूढ़ी है। कल जिस गुलाब की डाली पर बैठी बुलबुल गाती थी गीत जवानी का पंचम स्वर में, हूं देख रहा अब उसकी आंखों में आंसू, दब गया गीत उसका पतझर की हर हर में। जिस पाटल की पलकों की छाया के नीचे थी लगी हाट मदिरा की मधुपों का मेला, है आज पखुरियां बिखरी उसकी धरती पर, है खड़ा हुआ छाती पर मिट्टी का ढेला। ये तो रोज ही होता रहा है। अभी क्षण भर पहले जो फूल आकाश में इतराता था, क्षण भर बाद मिट्टी में दबा है। अभी क्षण भर पहले जवानी गीत गाती थी, क्षण भर बाद बुढ़ापा रो रहा है। मन तो रोज बदलता चला जाता है, कभी एक स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है, कभी दूसरा स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है। मन के साथ तो ये धोखा, ये लुका छिपी चलती ही रहती। मन का नियम यह है कि मन पूर्ण को नहीं देख सकता, इसे तुम समझने की कोशिश करो। मन केवल आधे को देख सकता है। जैसे मैं तुम्हारे हाथ में एक सिक्का दे दूं, सिक्का छोटा सा है, क्या तुम दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकोगे? जब तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे दूसरा दब जाएगा, जब दूसरा देखोगे पहला दब जाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने पूरा सिक्का नहीं देखा है। तुम सोचते हो कि तुमने देखा क्योंकि तुम दोनों अलग अलग देखे पहलुओं को कल्पना में जोड़ लेते हो, अन्यथा तुमने पूरा सिक्का नहीं देखा है। अगर तुम बहुत तर्कयुक्त हो तो तुम दूसरे सिक्के के संबंध में, दूसरे पहलू के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा विचारक विटगेंस्टीन ट्रेन से यात्रा कर रहा था, बड़ा तर्क युक्त मनुष्य था। पास ही एक मित्र बैठा था, खिड़की से उन्होंने झांक के देखा, सर्दी की सुबह धूप निकली है और एक खेत में बहुत सी भेड़ें खड़ी, उनके बाल अभी अभी काटे गए, वो सर्दी में थरथरा रही।
धूप में एक दूसरे से सिकुड़ी खड़ी। मित्र ने विटगेंस्टीन को कहा, देखते हैं, मालूम होता है भेड़ों के बाल अभी अभी काटे गए, ठंड पड़ रही और भेड़ें ठंड में सिकुड़ रही। विटगेंस्टीन ने गौर से देखा और कहा, जहां तक इस तरफ दिखाई पड़ने वाले हिस्से का सवाल है, जरूर बाल काटे गए, उस तरफ की मैं नहीं जानता। भेड़ को पूरा तो कोई देख नहीं रहा, उस तरफ का क्या पता। इस तरफ से भेड़ें ठिठुर रही हैं ठंड में, ये पक्का है, उस तरफ की मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मन एक चीज के एक ही पहलू को देख पाता है एक बार में। जवानी में एक पहलू देखता है, बुढ़ापे तक जब तक सिक्का उलटता है दूसरा पहलू देख पाता है। तो जवानी में कहता है ये महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में कहने लगता है कुछ और महत्वपूर्ण है। जवानी में राग रंग महत्वपूर्ण था, बुढ़ापे में त्याग की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। जवानी में मदिरा ले जाता था, बुढ़ापे में मस्जिद जाने लगता है। जवानी में रस राग वैभव विलास, बुढ़ापे में संन्यास की बातें, त्याग विराग, सारी भाषा बदल जाती। पर होता कुल इतना ही है कि सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सिक्के के किसी भी पहलू को जरूरत से ज्यादा मूल्य मत दे देना, दूसरा भी उतना ही मूल्यवान है, दोनों बराबर मूल्य के। और अगर एक साथ तुमने दोनों का बराबर मूल्य आंक लिया, दोनों तुल गए तराजू पर बराबर, तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति को ही मैं सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कहता हूं जिसने मन के सारे विरोधों को साथ रख के देख लिया और जिसने चुनाव करना बंद कर दिया और जिसने कहा यह पूरा मन ही लुका छिपी है, एक सामने आता है दूसरा छिप जाता है, फिर हम धोखे में पड़ जाते। जो धोखे में नहीं पड़ता, जो दोनों को देखकर, दोनों के विरोध को देखकर, दोनों का अनिवार्य सत्संग देखकर, दोनों से छुटकारा पा लेता है, द्वंद से जो मुक्त हो जाता है, द्वैत से दुई से जो मुक्त हो जाता है, वही परम शाश्वतता में ठहरता है, वही स्वभाव को उपलब्ध होता है। आखिरी प्रश्न, भगवान होने का आनंद लेना हो तो इसी क्षण भगवान हो कर लो, क्या यही आपकी देशना है? कल भ्रांति, आज ही सत्य है। आने वाला क्षण भी आएगा या नहीं कोई भी कह नहीं सकता, जो आ गया है बस वही आ गया है। तो कल पर छोड़ कैसे सकते हो, कल है कहां? कल रात यूरोप से एक युवक आया और संन्यास्त हुआ। मैंने उससे पूछा कब तक रुकोगे, उसने कहा कल तक रुका हूं। तो मैंने कहा फिर तुम कभी जा ना सकोगे, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। वो थोड़ा घबराया, अगर कल तक रुके हो तो सदा के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल जब आएगा तो आज हो जाता है, आज होकर ही कुछ आता है। समय का स्वभाव आज अभी है, कल तो मन की कल्पना है, कल तो मन का फैलाव है, कल तो आज से बचने का उपाय है। तो अगर तुम कहते हो कि कल लेंगे भगवान होने का आनंद, तो तुम कभी ना ले पाओगे। भगवान तो अभी है, यही है, सब साज सामान तैयार है, तुम गाना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? वीणा सामने रखी है, उंगलियां वीणा पर पड़ी हैं, तुम तार छेड़ना कल पर क्यों छोड़ रहे हो?
क्या तुम्हें पक्का है? यह हो सकता है वीणा कल भी हो तुम ना हो। कल पर छोड़ने की आदत संसार में खतरनाक से खतरनाक आदत है, आज ही जी लो। लेकिन तुम्हें सदा यही सिखाया गया है कल पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हें यह सिखाया गया हर चीज की तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए कल की जरूरत है। आज कैसे भोगोगे? सितार बजानी तो पहले सीखनी भी तो पड़ेगी, सीखने के लिए कल तक ठहरना पड़ेगा। गीत गाना है तो कंठ को साधना भी तो पड़ेगा, आवाज को व्यवस्था तो देनी होगी, तो कल की जरूरत पड़ेगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं, भगवान को भोगने के लिए कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं। जो बिना तैयारी उपलब्ध है वही भगवान है, जो तैयारी से मिलता है उसका नाम ही संसार है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी मेरी बात, मैं तुमसे फिर कहूं, जो साधना से मिलता है उसका नाम संसार है, जो मिला ही हुआ है उसका नाम भगवान है। संसार के लिए कल की जरूरत है, समय की जरूरत है, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं। ये गीत कुछ ऐसा है कि कंठ को साधना नहीं बस गाना है, ये स्वर कुछ ऐसा है कि कोई प्रशिक्षण नहीं लेना, ऐसा ही है जैसे कि मोर नाचता है बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी नृत्यशाला में गए पक्षी गीत गा रहे हैं, बिना कंठ को साधे। तुम जैसे हो भगवान वैसे ही प्रकट होने को तैयार है, तुम जैसे हो वैसा ही भगवान ने तुम्हें स्वीकारा है। कल मैं गीत पढ़ता था, मुझे प्रीतिकर लगा, यह बाविकार मुकफ्फिर, यह फलसफी सायर, बहुत बुलंद फिजाओं में फड़फड़ाते, चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, कभी खुदा न करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कम्बींद मतानस से मुस्कुराते, रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते, है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते। दार्शनिक, पंडित, पुरोहित, विचारक, शास्त्रज्ञ बड़ी ऊंची हवाओं की बातें करते हैं, बड़े ऊंचे आसमानों की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें उन आसमानों में कभी उड़ते नहीं। जिंदगी उनकी जमीन पर सरकती हुई पाओगे, बातें आकाशों की, वो सिर्फ सपने। और चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, और तुम सदा पाओगे कि जहां भी कोई जिंदा सुख हो उससे वो घबराते, मरे मराए सुखों की बातें करते हैं, या कभी होने वाले सुखों की बातें करते हैं, किन्हीं स्वर्गों की जो होंगे, किन्हीं स्वर्गों की जो कभी थे। चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, और जहां भी जिंदगी की खुशी दिखाई पड़ती कहीं कोई जिंदा सुख मालूम पड़ता उससे घबराते। मैं तुमसे कहता हूं, जो जिंदा सुख से घबराए वो भगवान का दुश्मन है, क्योंकि फूल उसी के, हवा की लहरें उसी की, पक्षियों के गीत उसी के, ये जो नाच चल रहा है चारों तरफ, ये जो जीवन का उत्सव चल रहा चारों तरफ, ये उसी का है। इससे जो घबराया, इससे जो शर्माया, इससे जो बचा, वो आदमी मुर्दा है, उसका भगवान भी मुर्दा होगा। जिंदा भगवान तो यहां है, मुर्दा भगवान कहीं और सात आसमानों के पार। कभी खुदा ना करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमीद मतानस से मुस्कुराते हैं, और ऐसे लोग हंसते तो है ही नहीं, और भगवान न करे कि कभी वो हंसे भी, क्योंकि वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में भी ऐसी घबराहट।

0: ऐसी गंभीरता, ऐसी निंदा, उनकी हंसी में भी हंसी नहीं होती, उनकी हंसी में भी लाश की सड़ांध होती। रबाबे जीस्त के आतिश मिजाज तारों पर, ये पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। जिंदगी के स्वर बड़े गर्म गर्म हैं, जिंदा हैं तो गर्म हैं। रबाबे जीस के आतिश मिजाज तारों पर, और ये जिंदगी का बाजा है, जिंदगी का साज है, इसके गर्म गर्म तार हैं। तैयार हैं कि छेड़ो अभी, निमंत्रण है, बुलावा है कि नाचो अभी, गाओ अभी। रबाबे जीस के आतिश मिजाज तारों पर गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते हैं, और ये जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी, ये इन गर्म गर्म जिंदगी की वीणा के तारों पर फिक्र और चिंता की बर्फ चढ़ाते, ठंडा कर देते, मार डालते। है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, और ये बातचीतें और ये विचारों की उड़ानें सब मरी हुई है, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते, जिससे जिंदगी ऐंठ जाती, जीवन के अंग ऐंठ जाते, ये सब बातें जिंदगी के विपरीत हैं, मौत की पक्षपाती। तुमने जिन्हें अब तक धर्मों की तरह जाना है, बुद्धों को छोड़ दो, महावीरों कृष्णों को छोड़ दो, उनके धर्म से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। उनका तो धर्म यही है कि भगवान अभी हो जाओ, उनका तो सभी का संदेश यही है कि वर्तमान के अतिरिक्त तो और कोई समय नहीं। उनने तो सभी ने कहा है कि इसी क्षण को तुम शाश्वत बना लो, इसी में डूब जाओ। लेकिन उनके नाम पर पंडितों पुरोहितों ने जो संप्रदाय खड़े किए, वो सब तुम्हें कल की तैयारी कहते हैं। वो कहते हैं आज छोड़ो, कल की तैयारी करो। उनकी वजह से ही तुम उदास हो, उनकी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी के अंग ऐंठ गए, उनकी वजह से तुम कुछ भी उत्सव नहीं मना पाते। गुरजीएफ कहता था कि सभी धर्म भगवान के खिलाफ है। बड़ा कठिन वक्तव्य है, क्योंकि हमें तो लगता है धर्म तो भगवान के पक्षपाती हैं। गुरजीएफ कहता है सभी धर्म भगवान के खिलाफ। मैं भी कहता हूं धार्मिक व्यक्ति भगवान के खिलाफ नहीं होता, धर्म सभी भगवान के खिलाफ। धार्मिक व्यक्ति तो कभी कभार होता है, जो धर्मों की जमाते हैं वो परमात्मा के विपरीत है। तुम्हारे महात्मा सभी परमात्मा के विपरीत है। महात्मा तुम्हें जिंदगी को छोड़ना सिखाते हैं, और परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी दी है, और महात्मा कहते हैं छोड़ो, और परमात्मा कहता है भोगो, जीवन परम भोग है। अगर तुमने मेरी बातों को ठीक से समझा तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन की ऊंचाई बनाओ, तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन के विपरीत मत रखो, अन्यथा तुम अड़चन में पड़ोगे। न तुम जिंदगी के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे, तुम दो नावों में सवार हो जाओगे जो विपरीत जा रही। तुम परमात्मा को जीवन का स्वर समझो, और तुम जीवन के प्रतिपल को प्रार्थना बनाओ। तुम जीवन को इस ढंग से जियो कि वो धार्मिक हो जाए। धर्म के लिए जीवन में अलग से खंड मत खोजो, धर्म को पूरे जीवन पर फैल जाने दो। लेकिन दुखी लोग हैं जो दुख को पकड़ते, वो जीवन में सब तरह का दुख का आयोजन करते। पहले धन के नाम पर दुखी होते, पद के नाम पर दुखी होते, फिर किसी तरह इनसे छुटकारा होता तो भगवान के नाम पर दुखी होते, लेकिन दुख की आदत उनकी छूटती नहीं। तुझको मस्जिद है, मुझको मैखाना, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है। कुछ हैं जो जिंदगी को मधुशाला बना लेते, जिनकी जिंदगी एक उत्सव होती, महोत्सव, एक अहिर्निश आनंद, और कुछ हैं जो जिंदगी को मस्जिद बना लेते। चर्च उदास मुर्दा मरघट का हिस्सा मालूम पड़ता है, जीवन का नहीं। अपनी अपनी किस्मत वाइजा, अपनी अपनी किस्मत है हे धर्मगुरु, अपनी अपनी किस्मत है। तुम धर्मगुरु बनने की चेष्टा में मत पड़ना, तुम धार्मिक होने की फिक्र छोड़ो, तुम परमात्मा के उत्सव को अंगीकार करो। जो जीवन में मिला है उसे इतनी गहराई से भोगो कि उसकी भोग की गहराई में तुम्हें सब जगह से परमात्मा के दर्शन होने लगे। भोजन भी करो तो ऐसे अहोभाव से कि उपनिषद के वचन सत्य हो जाएं, अन्नम ब्रह्म। सौंदर्य को भी देखो तो इतने अहोभाव से कि सभी सौंदर्य उसी की सौंदर्य की झलक लाने लगे। उठो तो उसमें, बैठो तो उसमें, चलो तो उसमें, जागो तो उसमें, सो तो उसमें, परमात्मा ही तुम्हारा लिबास हो जाए, वो तुम्हें घेरे रहे, तो ही मैं कहता हूं तुम धार्मिक हो पाओगे। धार्मिक होना 24 घंटे का काम है, इसमें छुट्टी का उपाय नहीं, इसमें रविवार का दिन भी नहीं आता। ईसाइयों की कहानी है कि परमात्मा ने 6 दिन संसार बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। अब पश्चिम में यूनियनवादी लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं 5 दिन होना चाहिए काम, 7 दिन 6 दिन। मुझे लगता है कि यूनियनवादियों ने ही उसको राजी किया होगा पहले भी कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन छुट्टी रख, नहीं तो मामला सब खराब हो जाएगा। जहां तक मेरे देखे परमात्मा 7ों दिन काम कर रहा है अहिर्निश। छुट्टी तो कोई तब चाहता है जब काम दुख होता है, जब काम ही आनंद हो तो कोई छुट्टी चाहता है। किसी ने कभी प्रेम से छुट्टी चाही? काम से लोग छुट्टी चाहते हैं क्योंकि काम उनका प्रेम नहीं। तुम परमात्मा से छुट्टी ना चाहो तब तो एक ही उपाय है कि तुम जो करो वो परमात्मा को ही निवेदित हो, समर्पित हो। तुम जो करो उसमें ही प्रार्थना की गंध समाविष्ट होने लगे, प्रार्थना की धूप तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से घेर ले, सुवासित कर दे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो वो झूठी रहेगी, क्योंकि परमात्मा सदा वर्तमान का है। भविष्य के परमात्मा तुम्हारी ईजादें, धोखे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में मस्ती ना होगी, मस्ती तो केवल अभी हो सकती। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, न तो तुम्हारी प्रार्थना में मस्ती है, न तुम्हारी प्रार्थना में परमात्मा है। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। प्रार्थना को मस्ती बनाओ, अच्छा हो मैं ऐसा कहूं, मस्ती को प्रार्थना बनाओ। नाचो गाओ, इसी क्षण ये हो सकता है। परमात्मा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और कब तक प्रतीक्षा करवाओगे? निश्चित ही यही मेरी देशना है कि अगर भगवान को जीना हो तो अभी, न जीना हो तो साफ कहो कि हम जीना ही नहीं चाहते, कल पर क्यों टालते हो? कम से कम ईमानदार तो रहो, इतना ही कहो कि हमें लेना देना नहीं, हमें प्रसन्न नहीं होना, हमें आनंदित नहीं होना, हमें दुखी रहना, होश से दुखी रहो। कम से कम सच्चे तो रहोगे, और जो होश से दुखी है ज्यादा दिन दुखी नहीं रह सकता। आज नहीं कल पहचाने का कि मैं ये क्या कर रहा हूं, एक महा अवसर मिला था गंवाए दे रहा हूं। जहां कमल के फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे बनाए ले रहा हूं। नहीं, तुम्हारी तरकीब यह है कि तुम कहते हो नहीं होना तो है प्रसन्न, लेकिन कल, कल के बहाने आज तुम दुखी हो लोगे। तुम कहोगे आज तो कैसे खुश हो सकते हैं, कल होंगे, आज तो दुख में है सो बिता लेंगे किसी तरह, गुजार लेंगे किसी तरह, लेकिन आज के ही गुजरे होने से तो कल निकलेगा। अगर आज दुख में गया तो कल सुखी नहीं हो सकता, इसी दुख से तो आएगा, इसी दुख पर तो बुनियाद पड़ेगी, इसी दुख पर तो कल का मंदिर खड़ा होगा। यही ईंटें तो कल के मंदिर को बनाएंगी जिनको तुम आज का क्षण कह के गंवा रहे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं आज ही मंदिर बना लो, मंदिर बना ही है, तुम आज ही प्रार्थना कर लो, कल को कल पर छोड़ो। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, कल कल की चिंता स्वयं कर लेगा, तुम आज जी लो। धार्मिक व्यक्ति में उसी को कहता हूं जिसने वर्तमान में जीने को ही एकमात्र जीवन बना लिया, फिर उसे परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता। सूफी फकीर अल हिलाज मंसूर ने कहा है कि इसमें भी क्या लुत्फ कि हम परमात्मा को खोजने जाएं, ऐसे भी ढंग है कि वो खोजता हुआ आता है। मैं तुम्हें ऐसा ही ढंग दे रहा हूं कि वो तुम्हें खोजता हुआ आए, ये भी कोई मजे की बात है कि तुम खोजते फिरो उसे, खोजोगे भी कहां, उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं। तुम अगर उत्सव में जियो तो वो तुम्हें खोज लेगा, वो उत्सव का संग साथी है, वो उत्सव को प्रेम करता है, इसलिए तो इतने फूल हैं, इतने गीत हैं, इतने चांद तारे, वो उत्सव का दीवाना है। तुमने उत्सव मनाया कि तुमने पाती लिख दी, तुमने उत्सव मनाया कि तुम्हारी खबर पहुंच गई, तुम नाचो, नाच की ही गहराई में तुम अचानक पाओगे उसके हाथ तुम्हारे हाथ में आ गए, वो तुम्हारे साथ नाच रहा है, पर नाच में ही पाया जा सकता है। ऐसी उदास मुर्दा शक्लें बना के लोग बैठे, परमात्मा भी झिझकता है। उसके साथ होने का एक ही ढंग है कि तुम नाचो।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूं इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी। उसके पीछे एक वजह है, खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा अमूमन कम होता है और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच सर।
3: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
4: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड।
3: ओह, रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
4: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है, लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मेंस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
3: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आए, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
4: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
3: ओह ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
4: बहुत खुशी मिलती थी, जो हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ, मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है, नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलेवेबल होती है,
3: बयान नहीं किया जा सकता।
4: एग्जैक्टली, और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए।
3: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ।
4: पल पल दिल के पास,
3: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स के एक मीनिंग है, और खासकर जब उस पे म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है या बिल्कुल खराब है।
0: इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो।
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी जी।
1: उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई। मदर, ब्रदर,
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके ओके,
1: ऑब्वियस ही बात है। और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: खैर, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है और वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं। अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग ही चल रहे हैं।
0: सॉरी, मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों में वो बात आएगी। अच्छा जी, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है सर?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया दीदी मुझे मार दिया, मैंने कहा अभी बताती हूँ, और उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड।
1: एक्जेक्टली।
0: देखिए, मैं पहले तो डरा हुआ था लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिस्टर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिस्टर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत।
0: सेम हियर, आए हाय, मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बाकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही है तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट द थिंग है, जो समाज का जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदी होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का, जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको, संस्कार।
0: क्या
1: संस्कार।
0: बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं चाहता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है, उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का, कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया। कि अगर हम सोचो देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है। मतलब दिस एंड दैट, मोबाइल एक ऐसा हो गया कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टैक्स कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है. मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गाँव है. और सबसे बड़ी बात जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. एंड सी हमारा जो भारत है उसकी ज्यादातर जो
0: गांव में
1: बसते हैं,
0: right.
1: वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर. सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट. एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट.
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है. और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे. संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ. और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है. हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं. दैट इज की फॉर देन द फैशन. अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का
0: नाम
1: किया है, बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस.
0: Exactly.
1: But still there are the this is the society. Society is like that na, ki in small cities and all the parents don't allow ki nahi abhi nahi, this is not for you, you go for that. So that should be stopped.
0: ओके, सो लिसनर्स, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं. कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे. सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई. आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे, सजा रहे. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: धन्यवाद.
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hurry up, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:08 हो चुके हैं, 8 तारीख है। हमारे आसपास के हादसे उसके बारे में बात कर लेना बहुत जरूरी है। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आज हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी पड़ रही है तो महसूस हो रही है, तो लेकिन ऐसे समय में बस करना क्या कि पानी भरपूर पीजिएगा, प्याज जरूर लगाएगा और एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा। समय पर सारे काम होते हैं, है ना। मौसम भी जरूर बदलेगा, ऐसी जिंदगी बदलती है दोस्त। यानी कि आप कोशिश करते जाइए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार कभी हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी है कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। यानी कि आप जिंदगी में भाग दौड़ किए जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहे, लेकिन धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। आप उसी धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। उसी धैर्य के साथ हम मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। बात निकलकर ये सामने आ रही है, IMD के अनुसार केरल और महाराष्ट्र में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली NCR की जब मैं बात कर रहा हूं तो बात आपको बताना चाहूंगा, 25 से लेकर 30 जून के बीच दिल्ली NCR में मॉनसून पहुंचने की उम्मीद है और प्री मॉनसून वाली बारिश और उमस से दिल्ली धधकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आज थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो जब भी घर से बाहर निकलें तो छाता खोल कर निकलेगा। हाँ, आप ही सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। दिलजीत दोसांझ की आवाज फ्रॉम द मूवी क्रू।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hey, suno, suno, suno! सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:21 हो चुके हैं, 8 तारीख है और क्या है अपडेट उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात निकल कर ये सामने आ रही है कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में जो एक घटना घटी, अग्निकांड हुआ जिसकी वजह से जनधन हानि हुई। हर घटना दुर्घटना हमें सीख देती है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न घटें, रिपीट न हो, यानी कि पुनरावृत्ति न हो। और यही बातों को ध्यान रखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिले में फायर विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं और जिले के जो होटल हैं, रेस्तरां हैं, गेस्ट हाउस हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले कई दिनों में फायर विभाग की टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे के जो आसपास 82 कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अचानक निरीक्षण किया है, तो उन्होंने पाया कि कहीं सही है, कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इवन यहाँ तक कि जो टेस्ट लिया गया तो उनको वो फायर जो होता है ना, जिसे आप आग बुझाते हैं, वो चलाना तक नहीं आता। और मजिस्ट्रेट को पत्र तक लिखा गया है कि एप्लीकेशन लिखी गई है कि इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। बहुत सारी कमियां पाई गई और इस तरीके से कई होटल्स की लिस्ट भी बनाई गई हैं और जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो स्टाफ को चलाना नहीं आता। और जाँच में ये सारी चीज़ें भी सामने आई कि जो बैकअप का जो दरवाज़ा होता है, जो दूसरा दरवाज़ा होता है, एग्जिट गेट होता है, वहाँ कई इस तरीके से सामान रखे होते हैं और निकलने का रास्ता नहीं होता, कि जिसकी वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो प्लीज़ समझदारी दिखाइए, हर घटना दुर्घटना से अपने आप को अलर्ट रखिए और भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं ना घटें, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम भी कुछ ध्यान रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:26 हो चुके हैं, 8 तारीख है। हमारे आसपास और क्या अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खास बात निकल कर ये सामने आ रही कि यमुना सिटी में 10 नए और सेक्टर बसाए जाएंगे। ईडा जो है और उसने लैंड बैंक बनाने की तैयारी कर ली है। तो इस तरीके से शासन प्रशासन जिसे हम कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने यमुना सिटी में ये काम करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जब ये सब होगा तो निश्चित तौर पर जमीन जाएगी, अधिग्रहण होगा और पौधे लगेंगे भी, पौधे हटेंगे भी, पेड़ लगेंगे भी, पेड़ कटेंगे भी, है ना। अब जब यही सब चल रहा है तो अपडेट निकलकर ये सामने आ रही कि कंक्रीट के जंगल और अर्बन हीट आइलैंड का असर, मतलब इस तरीके सोचिए दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा कंक्रीट का जंगल बन चुका है, ये अपडेट है हमारे सामने। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिसे देसी भाषा में कहा जाए कि गगनचुंबी इमारतें, डामर की सड़कें और लाखों की संख्या में जो एयर कंडीशनर चल रहे हैं, पर्यावरण में लगातार गर्मी जो छोड़ते हैं और जिसकी वजह से हम सबके सामने दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, है ना। तो ये जो कंक्रीट की संरचना है उस नमी को कैद कर लेती हैं और जैसी धूप जब सामने आती है तो इमारतें और सड़कें थर्मल रेडिएशन छोड़ती हैं और इसकी वजह से दिल्ली अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो जाते हैं। और जहां बारिश के बाद भी रातें और दिन बहुत ज्यादा गर्म और दम घोटू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि हमें इस बात को नहीं भूलना होगा कि हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा को आज हम देखते हैं कि ग्रीनरी एरिया है, हरा भरा एरिया है, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि दिल्ली बना डालेंगे हम लोग इसको। हाँ, प्रदूषण होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा और भीड़ भाड़ जो माचें आ रही वो भी दिक्कतें होंगी। हाँ, तो सोचना पड़ेगा ना। गगन के साथ हम तो कुछ लोग तो सोचते दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया को जिया क्या, देना पड़ेगा। पर्यावरण का ख्याल रखें वरना कोई हमारा ख्याल नहीं रखेगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। न किसी से बात, न इंटरनेट, एनटीए का चक्रव्यूह तैयार, री नीट परीक्षा तक लॉकडाउन में रहेंगे पेपर सेंटर। क्या अपडेट है, क्या डिटेल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करना बहुत जरूरी है, संभल कर कदम रखना बहुत जरूरी है। सच बात तो ये कि अगर ये ही सब चलता रहा तो दिक्कतें परेशानियां हम सब के सामने आ ही जाती हैं और एक विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। लेकिन अब की बार जो एंट्री हो रही है वो कमर कसकर तैयारी के साथ मैदान में उतर है। शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम कहते हैं एनटीए, ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को तैयार करने के लिए, यानी कि परीक्षा सेंटर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पेपर लीक ना हो, बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बारे में जहां मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्ट वॉच पूरी तरह बंद रहेंगे और पेपर की छपाई, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये जो एग्जाम होने जा रहा है, 21 जून को एग्जाम होने जा रहा है, ये समझ लीजिए कि जो एक्सपर्ट है उनको एक तरीके से आइसोलेशन में रखा जाएगा, निगरानी में वो लोग रहेंगे। और सुरक्षा का जो पहला घेरा है, जिसे इंटरनेट, मोबाइल, ये स्मार्ट वॉच, ये सारी बंद रहेंगे जहां आसपास ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। और लाने ले जाने के लिए वायुसेना कोशिश कर रही है कि अपने विमानों से जो पेपर हैं उनको पहुँचाया जाए। और 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि कहीं कोई भ्रामक खबरें ना फैलाए कि ये फर्जी प्रश्न पत्र है या वगैरह वगैरह। सो प्लीज़ आने वाले समय के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑनली सुरशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। लेवल टिप्स ऑफिशियल, सो लेट्स लिसन टू इट ऑन योर सुरशाता 90.8 एफएम

0: your investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.
1: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और क्या अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। खास बात निकलकर ये सामने आ रही कि मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD हमें हमेशा अलर्ट करता रहता है गूगल के माध्यम से। अगर आप चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए सुरू शारदा 90.8 एफएम को भी आप सुनते रहिए क्योंकि यहां से भी मैं आपको हमेशा अपडेट रखता हूं। 11 जून से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। यह से मैं कट टू कट पढ़कर इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सोर्स NBT के माध्यम से यह बात मेरे सामने है। तो अगले दो दिनों में टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और उसके बाद के दो दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी और न्यूनतम तापमान में 10 जून 2026 तक 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी सी वृद्धि या इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद के 24 घंटों में कोई बड़ा भी एक्सचेंज या मतलब कोई भी चेंजेस या बदलाव नजर नहीं आएगा और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। अब ये अपडेट मैंने आपको दे दी। हर रोज मैं बता रहा हूँ कि आंधी, बारिश, तूफान की जब आसार आपको दिखते हैं तो सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। कल की अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट पर विमान आपस में टकराए और जो ट्रिस्टल जो सीढ़ी होती है उसके आसपास इस तरह से प्लेन वो टकराया है जिसकी वजह से थोड़े विमान को नुकसान हुआ है। और जब ऐसे हालात बनते हैं तो हम अपनी बाइक को आंधी तूफान में एक तरफ कर दें, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, कुछ ऐसी जर्जर इमारत के नीचे ना खड़े हों ताकि जनधन हानि ना हो। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। हाय हाय, ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल दे तेलुगु में। हाँ

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:52 हो चुके हैं। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिकेट के बारे में जब बात होती है तो निश्चित तौर पर हर कोई उस बात को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और जहां कहीं मैचेस होते हैं गली मोहल्लों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर क्राउड या दोस्त सब वहीं चले जाते हैं मैच देखने के लिए। और टीवी पर अगर कोई खास मैच आ रहा हो तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ टीवी सेट के साथ चिपक जाते हैं। और बात हो वैभव सूर्यवंशी की तो निश्चित तौर पर ये वैभव का जो सूर्य उदय हुआ है सलाम तो बनता है, दिल से सलाम। ऐसी मेहनत अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होना तो लाजमी है ना। IPL 2026 की अगर मैं बात करूं तो 776 रन 72 छक्कों के साथ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने के बाद वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली है। और उन्हें आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के साथ साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम में चुना गया है। एक सपना होता है, सपना अपना होता है और उसके साथ साथ इंसान को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि वैभव ने वो साबित कर दिया है, तीनों फॉर्मेट वो खेलना चाहते हैं जैसा कि वो कह रहे हैं और ईश्वर ने खुदा ने उनको ये मौके दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा करें देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और निश्चित तौर पर वैभव ने उस युवा पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोला है जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। जब भी कोई इनकी वीडियोस आती हैं तो हम देखते हैं कि चरण स्पर्श करने की जो इनकी कला है बहुत ही खूबसूरत है। और ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान है कि जो अपने से बड़े हैं। हाँ, बड़ा अजीब लगता है कि अंकल

सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th June 2026 इन ऑनलाइन मोड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 रुपी। फॉर मोर अपडेट कॉल 8851102300 और 9785014998sme.conference@sharda.ac.in। हरिया, वेयर आर यू? द वॉल इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में। यहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर वेबी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं नवादा में और अपना क्लिनिक चलाती हैं, और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे। और खास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएं होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं, और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर वेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर वेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है, और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है बीमारी की, और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो, तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है, या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी। तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं?
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में, अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीजन का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए। जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाय डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोच कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूँगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ क्या करती हैं 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम, अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में, जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज्यादा केसेस आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूंगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
0: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
1: लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की, क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो आरबीसीज हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यूबॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं, ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले, माता हैं, वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर, और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार ऑफिस बच्चे बहुत सारे रीज़न होते हैं सर।

0: लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीजन है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो कोई डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो वही दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को जिस किसी को भी मानते हो तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हीट वेव के बारे में भी सुनते हैं, लू के बारे में भी सुनते हैं, तो किस तरह से लोग, महिलाएं, बच्चे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, क्या खाएं क्या पिएं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहला तो बचाव यही है सर, अगर हमें किसी भी चीज से बचना है तो उस चीज से दूर रहो। तो अगर आपको पॉसिबल है जितना आप घर पर रह सकते हैं तो उतना आप घर पर रहिएगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबको काम करने के लिए भी निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अपना बचाव कीजिएगा, अपनी बॉडी को कवर करके निकलिएगा। खासकर आपका जो सिर वाला रीजन है, जहाँ पे हीट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको आप कवर करके निकलिएगा और अपने साथ हाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल है वो एक बोतल पानी में घोल के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। और बजाय कि आप चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने के, आप रास्ते में भी कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने या कुछ जो ये जलजीरा टाइप के आते हैं ये पी लिया, मतलब अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कवर करके निकलना है। तीसरा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, घर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कुछ भी हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके निकलना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा कोई साधन है तो अपने बैग में एक दो फ्रूट्स जरूर रखिएगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM Sharda School of Media Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जो खेती है वो आधुनिक तरीके से करें। परंपरागत तरीके से आप खेती करते हैं तो उसमें पैदावार कम होती है, लेकिन आज के जो आधुनिक तरीके हैं अगर उनका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं तो हम अच्छी खासी आमदनी खेती से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि केवल खेती पर ही आप निर्भर ना रहें, उसके साथ और भी काम करते रहें, जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, आपका जैविक खाद बनाने का प्लांट है, मधुमक्खी पालन है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस तरह से जब आप खेती करते हैं तो जरूर आपको खेती से लाभ होता है। और पशुपालन तो हमारे हर किसान भाई को करना ही चाहिए, क्योंकि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जो पशु हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, चाहे हम दूध की बात करें, और उनका जो गोबर होता है वो तो इतनी अच्छी खाद उसकी बनती है कि उसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में जब हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भूसी बचती है, सब्जियां लेके आते हैं तो उसके अवशेष बचते हैं, जब कभी हमारे घरों में खाना ज्यादा बन जाता है, रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो उनको पशु खा लेते हैं। तो किसान मित्रों, ये जो तालमेल है खेती का और पशुपालन का, ये यूं ही चलते रहना चाहिए, तभी आप खेती से लाभ ले सकते हैं। और अब बात आती है किसान मित्रों कि जब आप खेती करते हैं तो बहुत सा समय आपके पास बचता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कहाँ पे करें। वैसे आप अपने खाली समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं, साथ ही जो हमारे घरों की महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो भी अपने खाली समय में इस धंधे को आराम से करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रखरखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर का बचा कुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है, और उसके बदले आपको मुर्गियों से उत्पाद प्राप्त होता रहता है। किसान मित्रों, मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ सफाई और हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना कम होती है। और किसान मित्रों, आपको याद ये रखना है कि शुरू से ही मुर्गियों में रोग निरोधक उपायों का अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है, क्योंकि संक्रामक रोग हो जाने पर मुर्गियों को बचाना कठिन होता है। मुर्गी के बीमार पड़ते ही उसे स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से अलग कर देना चाहिए और पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार मुर्गियों की देखभाल करे उसे स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिन्हें वो आसानी से धो सके या फेंक सके। हाथों को कीटाणुनाशक दवाओं से धो लेना चाहिए। जिस घर में बीमार मुर्गी रह चुकी हो उसमें नई मुर्गियां रखने से पहले चूना से पुताई करवा देनी चाहिए, साथ ही समय समय पर DDT आदि का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इस तरह से किसान मित्रों, आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मुर्गी पालन की, और अब आप सोच रहे होंगे अपने मनोरंजन की, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादन बढ़े और खेती में लागत कम आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है, और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है। तभी हमें पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। इसीलिए किसान मित्रों, आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी जांच से पता चल जाता है, और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी की जांच से पता चल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेतों से भरपूर पैदावार हो और आपकी खेती में जो लागत है वो कम आए, तो आप अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कहाँ पे करवाएं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं मिट्टी का सैंपल लेकर के, और वहां पर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उसके बाद फिर फसल के हिसाब से खाद का प्रबंधन करके अच्छी आमदनी खेती से ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि मिट्टी की जांच का कितना बड़ा महत्व है खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागिनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और लोकेंद्र सिंह। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं ये रागिनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और लोकेंद्र से ये रागनी, किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा दिया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी देखने में नहीं आया है और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी देखी जा सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाइयों द्वारा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है और हमारे खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैव उर्वरकों के उपयोग की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं महेश बपरौली और किस्सा रहेगा पृथ्वी सिंह किरणमयी का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महेश बपरौली से ये रागनी, किस्सा था पृथ्वी सिंह किरणमयी का। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।

0: जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
1: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
0: तो आपको क्या समझ में आया? फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखा दें, क्योंकि फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो. इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार. तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का. हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर.
2: रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो. ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके. श्रोताओं, शादी के खूबसूरत बंधन में बंधते समय एक लड़की हजारों सपने देखती है और उन सपनों को संजोते हुए अपने घर की दहलीज लांघकर दूसरे घर जाती है जहां वे उम्मीद करती है कि प्यार और विश्वास की डोर से वो सबको अपना बना लेगी. लेकिन जब अपने रिश्ते ही कांटा बनकर चुभने लगे तब एक औरत कहां जाए. तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की ओर और जानते हैं कि स्नेहा कौन है और आज उसके घर पर इतनी चहल पहल क्यों है.

0: लड़कियों, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, जाओ जाओ बारात आने वाली है, किसका इंतजार कर रही हो, चलो चलो जल्दी करो, चलो जाओ।
1: माँ परेशान क्यों हो रही हो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब तू भी जल्दी कर, बारात आने वाली है।
1: माँ वो सब छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।
0: बहुत सुंदर। अच्छा ये बता तेरे पापा कहाँ हैं? अभी तक तैयार हुए या फिर नहीं? अरे बारात आने वाली है और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं।

0: नहीं मत मारिए, मत मारिए, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मुझसे हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी, छोड़ दीजिए मुझे।
1: अरे श्याम बेटा, और फिर करमजली ने क्या करके रख दिया?
2: अरे माँ, इसका वही रोज रोज का स्यापा, वही रोज रोज का तमाशा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ इसे कि मुझे सुबह 8 बजे चाय दे दिया कर, मुझे सुबह 8 बजे चाय मिल जानी चाहिए, लेकिन इसको है कि समझ आता ही नहीं, मुझे चाय ही नहीं, मुझे चाय नहीं मिलती 8 बजे। और अब मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ, सुबह सुबह सारा मूड खराब करके रख दिया माँ इसने मेरा।
1: कोई बात नहीं बेटा, तू ऑफिस जा, इसको मैं देखती हूँ। अरे करमजली, तुझे कब अकल आएगी, जिंदगी हराम करके रख दिया हम लोगों की। क्या सोचा था कि एक पैसे वाली बहू लेकर आएंगे और घर में आ गई तू।
0: माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है?
1: जुबान लड़ाती है मुझसे?
3: बेटी कैसी है तू?
0: माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सास और पति मुझे रोज रोज बहुत पीटते हैं, मैं तंग आ गई हूँ और अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से।
3: अरे सनेहा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना नहीं करते, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब हर बात पर तो मायके उठ कर आ जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं बेटा।
0: माँ यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे।
3: सनेहा पहले तो मेरी बात सुन, तू दामाद जी की सारी बातें माना कर और उनसे बहस बिल्कुल मत किया कर, समझी? बाकी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं फोन रखती हूँ, तू अपना पूरा ध्यान रखना।
2: स्नेहा, स्नेहा
0: जी आई।
2: कब से आवाज लगा रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी खाना लेकर आ मेरे लिए, भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा।
0: अभी लाती हूँ, ये लीजिए।
2: ये क्या बनाया है तूने, इसे तू खाना कहती है? जहर है ये जहर, जहर लाती है मेरे लिए, हैं? बेवकूफ बनाती है बार बार मुझे, कितनी बार समझाऊं तुझे?
0: बचाओ, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो।
2: छोड़ूंगा तुझे,
0: छोड़ दो मुझे।
2: अरे जा दफा हो यहाँ से।

0: शादी का बंधन बड़ा ही खूबसूरत सच है, लेकिन ये सच किसी की जिंदगी का खौफ भी बन जाता है। हम लोग समाज को लेकर तो बड़े सजग रहते हैं कि ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या वैसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि इसके नीचे एक औरत का जीवन, उसके सपने और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब जागरूक हों और जब भी किसी महिला के साथ हिंसा होते देखें तो जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो। यदि इस कार्यक्रम से जुड़े आपके भी कोई विचार या कोई सवाल है तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7018712909। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती।

0: और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता। आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
1: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
0: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
1: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM. Suno Sharda
4: 90.8 FM. भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पू, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: श्रोता संवाद।

0: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण श्रोता संवाद में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उमंग कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। श्रोताओं, आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल। आप CIET NCERT में प्रोफेसर हैं और मीडिया निर्माण विभाग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण में मैं श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद अजीत जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक खास सवाल है, वो ये है कि हमें श्रोता संवाद कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसी भी संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है संवाद बनाए रखना। सबसे पहले मैं उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोता मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फोन और ईमेल के द्वारा हमसे लगातार संवाद बनाए रखा।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि परस्पर संवाद संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। श्रोताओं, उमंग प्रसारण में श्रोता संवाद प्रसारित करने का हमारा तात्पर्य है आपकी हमारी सीधी बात। कुछ आप कहें, कुछ हम कहें, कुछ आप पूछें और कुछ हम बताएं, कुछ हम पूछें और कुछ आप बताएं, है ना? क्योंकि हमें शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाने होते हैं, तो कई बार संभव है कि आपका नाम रह जाए। तो श्रोता संवाद में हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन के प्रसारण में जो नाम रह जाते हैं उन्हें हम शामिल करें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं श्रोताओं के पत्रों से।
1: बिल्कुल।
0: पहला पत्र हमें मिला है बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका पंजाब से। लिखने वाले हैं अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। आप लिखते हैं, रेडियो के साथ उठते हैं, इसी के साथ सोते हैं, जब सुनते हैं नाम अपना तो बहुत खुश हम होते हैं। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो आपा जरा सा खोते हैं, हमारा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, हम रेडियो श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कविता पूर्ण संदेश के लिए। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, कितना उत्साह है हमारे इन श्रोता मित्रों में।
1: जी, हम तो आपको यही कहना चाहेंगे, किसी उत्साह से सुनते रहिए हमारा उमंग कार्यक्रम।
0: जी,
1: और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को परिवार सहित यह कार्यक्रम सुनने के लिए जरूर प्रोत्साहित कीजिए।
0: जी हाँ,
1: हमें संदेश भेजकर यह भी बताइए कि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक निखार कैसे ला सकते हैं।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है और हम श्रोताओं से भी अनुरोध करेंगे कि अवश्य हमें बताएं और हम क्या करें कि हमारा कार्यक्रम और निखर कर आपके लिए प्रस्तुत हो। श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। इसमें होती हैं कहानियां, इसमें होते हैं नाटक, गीत, संगीत और भी बहुत कुछ। सर, अगला पत्र हमें मिला है करण बिंद का। आप महाराष्ट्र से हैं और आप लिखते हैं, मैं नवीं कक्षा का छात्र हूं और आपका उमंग कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूं। आजकल आपके कार्यक्रम में जो श्रृंखला समाचार पत्रों पर चल रही है मुझे काफी पसंद है। आपके सभी कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर होते हैं।
1: करण जी, पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यार्थी हैं, खूब मन लगा कर पढ़िए और उमंग कार्यक्रम भी सुनते रहिए।
0: बिल्कुल।
1: आपने लिखा है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम निवेदन करेंगे कि स्कूल में अपने सहपाठी मित्रों को भी उमंग कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए।
0: जी हाँ, आप जरूर बताएं अपने मित्रों को भी। डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है गांव निपनिया, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं अश्विनी मिश्रा जी। आप लिखते हैं, आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलती है और वह कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करता। मुझे महान रसायन शास्त्रज्ञ थॉमस एल्वा एडिसन पर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमें जानकर अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और खास करके थॉमस एल्वा एडिसन पर आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्रा जी। अगला पत्र हमें मिला है ग्राम बंगला मटिया बालोद छत्तीसगढ़ से, शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे का। आप लिखते हैं, आपका रेडियो कार्यक्रम उमंग मन को उमंग से भर देता है। इसमें महत्वपूर्ण बातों और विषयों का समावेश किया जाता है। कार्यक्रमों में अजब गजब, महादेशों की जानकारी, संविधान में उल्लेखित भाषाओं की चर्चा, इन्हें जानिए आदि, और अब होनहार बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। भाषा विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे विषयों की कठिन बातों को भी इतने सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि सुने बिना रहा नहीं जाता। तो शिक्षाप्रद सुरुचिपूर्ण प्रसारण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम न सिर्फ शिक्षाप्रद लेकिन मनोरंजक भी हों। इसी प्रकार संदेश भेजते रहिए, आपके संदेशों से हमें प्रेरणा मिलती है और मनोबल बढ़ता है।
0: डॉक्टर साहब, प्रतिदिन हमें ईमेल और फोन पर श्रोताओं के बहुत सारे संदेश मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पास पत्रों की भरमार है। कुछ और हमारे श्रोता मित्रों के नाम इस प्रकार से हैं: गुजरात से महादेव हरिभाई देसाई, दिल्ली से रेशमा और शकीला अंसारी, मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, ठियोक शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का गजभिये और तन्मय गजभिये। साथ साथ हमें संदेश मिला है पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर का। डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश हमारे पास
1: है? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, सभी के नाम लेना आवश्यक है
0: जी, और हमारे श्रोता भी इसके द्वारा बहुत ही प्रोत्साहित अनुभव करेंगे। कुछ पत्र और हमारे पास हैं: सत्रोड खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस, और साथ में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल। कुछ और पत्र हमारे पास आए हैं: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबू राम जयपाल, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन और हेमलता दिवांगन। और अंतिम संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब आपके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपसे हम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य में बहुत से सुखद परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से एक है NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि इन नई पाठ्य पुस्तकों में नवीनता क्या है।
1: जी अजीत जी, NCERT की पुस्तकें नई हैं तो उनमें बहुत कुछ नया भी है।
0: जी,
1: पहली बात, गुणवत्तापूर्ण छपाई और रंग बिरंगे आकर्षक चित्र। बच्चे इन पुस्तकों को जरूर पसंद करेंगे।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो है, मैंने भी इन पुस्तकों को व्यक्तिगत रूप से देखा है।
1: और दूसरी बात, इन नई पुस्तकों में दी गई रोचक कहानियाँ चित्रों उदाहरणों में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। NCERT की नई पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, समस्या समाधान, समन्वय और सहयोग जैसे 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करना है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे मन में आता है, और वो ये है कि NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें आज के या आधुनिक संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक हैं?
1: अजीत जी, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नई पुस्तकों की सामग्री और अवधारणाएं समसामयिक विषयों और आज समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हैं।
0: जी,
1: ये विद्यार्थी केंद्रित हैं, पुस्तकें अत्यधिक रुचिकर और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए मित्रवत भी हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने और एक बात सुनी है, वो ये है कि ये पुस्तकें पुरानी पुस्तकों की तुलना में ज्यादा गतिविधि आधारित हैं, क्या ऐसा है?
1: जी, इन पुस्तकों में पाठ्य सामग्री के अलावा अभ्यास गतिविधियां भी दी गई हैं। इसलिए ये पुस्तकें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में। आपको और एक खास बात बता दें, और वो ये है कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं की हमारी नई पाठ्य पुस्तकें अब NCERT ऑफिशियल YouTube पर ध्वनि पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं।
1: जहां तक पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का प्रश्न है, आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि हाल ही में NCERT ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ एक अनुबंध किया है। इसलिए अब आप यहां से भी अपनी पाठ्य पुस्तकें मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अविलंब मिल जाएंगी।

0: तो श्रोता मित्रों, सुना आपने, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अब एनसीईआरटी की पुस्तकें मंगाने में आपको असुविधा और विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं एक विशेष जानकारी। श्रोता मित्रों, मनोदर्पण के बारे हम उमंग कार्यक्रम में अक्सर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, जैसे
1: कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, प्रश्न पूछने या परीक्षा देने में डर लगना, सहपाठियों के साथ किसी प्रकार की समस्या का होना या पढ़ाई में आत्मविश्वास का न होना, पाठ को ठीक से याद नहीं कर पाना या अध्ययन को व्यवस्थित करने में समस्या का होना, जैसी किसी भी समस्या या किसी प्रकार की भावनात्मक समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी द्वारा संचालित मनोदर्पण फोन इन मंच आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि इसके द्वारा आपको सुविधा मिलती है कि आप एनसीईआरटी के शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों से फोन पर सीधी बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं और मनोपरामर्श ले सकते हैं।
0: जी,
1: आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सारे परामर्श इस फोन की सेवा द्वारा मिल जाएंगे और आपको सचमुच इस फोन इन सेवा से लाभ होगा।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार से सहयोग भी एक वीडियो मंच है जिसमें आप विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सहयोग वीडियो परामर्श मंच में आप अपनी समस्याओं को भी स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो सहयोग और मनोदर्पण का हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए, नंबर है 8448440632। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8448440632। और हाँ, उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ साथ आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लें। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और एनसीईआरटी से संबंधित उपयोगी जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अब अपने मित्र अजीत और प्रोफेसर राजेंद्र पाल को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और कार्यक्रम का शीर्षक है
2: 3 कछुए।
3: एक मर्तबा का जिक्र है कि 3 कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं। मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे, चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहां पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहां कुछ दिन आराम करें और इस शांति के स्थान का कुछ मजा लूटें।

उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूं तो सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए इसमें सर्दी का असर नहीं होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे? फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी, उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए।

0: उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला,
1: मंझले कछुए, तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
0: मझला कछुआ बोला,
2: मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त तो चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ।
0: छोटे कछुए ने बहुत आना कानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। और उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला,
1: मैं चला तो जाऊं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा तो वो भी झूठा होगा।
0: दोनों कछुओं ने कहा,
1: अरे ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
0: छोटा कछुआ संजीदगी से बोला,
3: जी हाँ जरूर करोगे,
1: मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे।
0: मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की। और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे हम खाने में हाथ न डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया।

0: अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, यहां तक के 100 साल गुजरे। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उन दोनों को यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि
1: अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं।
2: अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता।
0: आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी न था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला,
3: मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था। यही बैठा हुआ देख रहा था।
0: दोनों कछुए भौचक्का रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते।
4: 3 कछुए।
5: तो इस लोक कथा के बाद अब आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो अजीत
6: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
9: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें होती हैं, हमारी बातें होती हैं, और हमारे आसपास क्या खास हो रहा होता है वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वर्तमान समय को अगर हम देखें तो स्टार्टअप की बातें चारों तरफ है। स्टार्टअप एक आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक ऐसा विचार जो आपको आगे लेकर जा सकता है। इस दिशा में, इस क्षेत्र में आप बहुत कुछ खास कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। अगर आपको एक सच्चा अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। जहन में सवाल आता है कि स्टार्टअप क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से चर्चा की है। जी हाँ, स्टार्टअप चौराहा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर सौमिल मुखर्जी, एन एक्सपर्ट इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कार्यरत हैं। दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड एनएलपी कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ CISF ग्रेटर नोएडा यूनिट, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी। और इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है शारदा लॉन्च पैड इन एसोसिएशन विद PAPSWIRE, द पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ स्टार्टअप इन यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहा है सुनो शारदा 90.8 FM। आइए चलते हैं इस चर्चा की तरफ।
2: स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, या हिंदी में बोले तो नवाचार, उद्यमिता, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में हम लोग रोज ही सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं बहुत जगह पर, और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की है स्टार्टअप चर्चा के नाम से, जो शारदा यूनिवर्सिटी में शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन और पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसीज कंपनी की तरफ से जॉइंट एक इनिशिएटिव है। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड के अंदर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथियों के साथ। हमारे साथ हैं श्री सौमिल मुखर्जी, जो PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस से हैं, और मैडम श्रद्धा अवस्थी हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले सौमिल मुखर्जी जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस में और भारत सरकार के साथ वो किस तरह से जुड़े हुए हैं।
3: मैं आपको विस्तारित रूप में ये कहना चाहता हूँ कि साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है ये 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी जो संगठित हुई थी, और उस टाइम APJ अब्दुल कलाम सर जी हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने पहला साइंटिफिक एडवाइजर का जो दौर था वो देश के पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। और जितना भी हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान की काम होती थी उस टाइम, चाहे वो न्यूक्लियर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एयरोस्पेस में हो, उस टाइम पे हमें ये भी पता है कि पोखरण से की हमने की थी उस टाइम चर्चा, और इंडिया वाज सक्सेसफुल आल्सो इन दैट। तो देयर वाज एन इवोल्यूशन हैपनिंग बिकॉज इंडिया वाज इवॉल्विंग इन द स्पेस। सो प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को उस टाइम हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी चीजों में एडवाइस की जरूरत थी फ्रॉम ऑल द scientists and researchers that are available in the country. So APJ Abdul Kalam led this initiative, and from then currently hum leadership hai abhi jo chautha hamare scientific advisor professor Jasood, wo Indian Institute of Science se aate hain aur wo khud hi semiconductor aur nanotechnology

0: AI ML हमेशा हमारी कंट्रीज को बढ़ावा दे रही है और हर एक स्पेस में उसकी यूटिलाइजेशन है. AI ML में हमें देखने को मिलता है, और भी जैसे डीप ओशन मिशन हो गया, फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन हो गया, और फिर वन हेल्थ मिशन है, अग्नि है जो कि स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स को हेल्प करता है. ऐसे मिशन पे PSA ऑफिस काम करता है और लीड करता है. फिर एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप भी है जो बेसिकली पॉलिसीज पे इंडस्ट्री की जो गैप्स है, जो लैक्यूनस है, उसको एड्रेस करने में लगे होते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाए लाइन मिनिस्टर्स को एडवाइस करने के लिए. और तीसरा हमारा डिवीजन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं और लीड करती है डॉक्टर सपना कोटी जो IIT मद्रास के स्कॉलर है. एंड दिस डिवीजन बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डिवीजन है, इनका इसका मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री अकेडमियां एंगेजमेंट्स कराते हैं, फैसिलिटेशन कराते हैं फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द कंट्री एंड सीमलेस कोलैबोरेशन थ्रू प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड मंथन, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है तो ये सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है जितनी मेरी जानकारी में है. और जरूर ही जो हमारी भारत सरकार के जो मिशन है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम अभी ड्रीम लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जरूर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस का रहता होगा इसके अंदर. मैडम श्रद्धा अवस्थी, आपके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए. हमारे साथ सुनो शारदा FM से बहुत से हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं और हमारे YouTube चैनल से भी बहुत से हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इसको इसके बारे में और जानना चाहते हैं. तो थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप, जैसे मैं जानता हूँ इंडस्ट्री और अकेडमिया दोनों ही डायरेक्शन में आपने बहुत काम किया है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए जानकारी दीजिए.
2: नमस्कार सभी लोगों को. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 17 साल का एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री और एकेडमिया में ज्यादा रहा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा कनेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली और बात करी, उनके जो आइडियाज थे वो कैसे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं. तो जो मैंने सोचा कि इसी फील्ड में ये लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जा सकते हैं, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेटर क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, तो इसी में मैंने काफी काम किया है. प्लस मैं एक ट्रेनर भी हूँ और सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ. लैंग्वा फिना ग्लोबल सर्विसेज कंपनी है, उसी में तो उसी में ही मैं एक हमारा एक प्रोग्राम चलता है जो कैंपस टू कॉर्पोरेट कनेक्ट. तो उसमें एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं. तो उसमें जो एक पार्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं, नया डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कि उनको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बाहर से तो हमें जितना मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अंदर का मोटिवेशन कैसे डेवलप होगा. तो आइडियाज बहुत होते हैं बच्चों के पास, बट कैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, कैसे आइडियाज को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए कुछ हम जो है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. तो उस सपोर्ट और गाइडेंस में बहुत सारे चीजें हैं, मेंटरिंग है, कोचिंग है. तो डिफरेंट एरियाज हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत जरूरत होती है, तो उसी फील्ड में हम उनको सपोर्ट देते हैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच.
1: धन्यवाद. हम लोग स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आजकल ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गई है, लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें तो सदियों से जो भारत देश रहा है वो किसानों का और उद्यमियों का देश रहा है. कितना भी पुरानी हम सभ्यता में चले जाएं जो हमारे भारत के इतिहास के अंदर है, तो हमेशा से हम लोगों ने ये देखा है कि ज्यादातर लोग या तो किसान थे या खेती से जुड़े हुए थे या उन लोग किसी ना किसी तरह के रोजगार के अंदर थे. तो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता हमारे एक इतिहास का, हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. तो डेफिनेटली उसी का इफेक्ट हम आजकल देख रहे हैं कि जब ये सपोर्ट हमें सरकार की तरफ से मिलना शुरू हुआ तो हमारी वो जो सभ्यता चली आ रही थी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो इनबिल्ट स्किल्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं एक उद्यमी जगत में जाने की, उद्यमी बनने की या किसी भी तरह के रोजगार को आगे बढ़ावा देने की, नए नए रोजगार शुरू करने की, तो वो फिर से कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रही है हमारे अंदर और उन स्किल्स को हम डेवलप कर पा रहे हैं. और जहां पर और जरूरतें हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं. तो आप लोग जैसे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इससे इनिशिएटिव्स के साथ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कमी लग रही है, कुछ सपोर्ट में दिक्कत उन्हें आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें और वो सारी कमियां बहुत जल्दी पूरी होंगी और ये जो

हम लेके चल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का और एक आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का, तो ये मिशन बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं जरूर पूरा होगा। तो हम इसके बारे में अभी और स्टार्टअप्स में उनको सपोर्ट करने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आने के लिए, किस तरह से पीएसए ऑफिस काम कर रहा है और क्या नए इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, इसके बारे में अभी हम और एक जानकारी लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के अंदर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं सौमिल मुखर्जी जी और मैडम अवस्थी जी। तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में, और सौमिल जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जो स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, या जो इनोवेशंस नए नए लोग लेकर आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें सिस्टम्स नए बनाए जा रहे हैं, नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन और रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो युवा लोग हैं या हमारे जो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना जॉब में या कहीं पर काम करने के बाद कुछ उनके पास नए थॉट्स, नए आइडियाज आते हैं और उसके ऊपर फिर वो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं?
1: जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है जो हमारे इंडिया में बन रही है, इंडिया की रैंक जब शुरू हुई थी, ये स्टार्टअप इंडिया की जो मिशन है सरकार की, वो 2016 में स्टार्ट हुई थी केवल 50 स्टार्टअप्स के साथ, और आज की डेट में हमारे पास DPIT रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, दैट इज अराउंड 92,000 प्लस करेंटली अभी फिलहाल। तो हम अगर बात करें, ये सारे 90,000 के जो स्टार्टअप्स है, ये अपने अपने डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, कोई AI ML में, कोई अपने क्वांटम में, मशीन लर्निंग में, ब्लॉकचेन में, इतने सारे नए तरीके के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। बट एक रूफ में अगर हम बात करें कि अगर हर स्टार्टअप कोई अपना अलग करना चाह रहे हैं, कोई अपना ऐसा बहुत हमने केसेस देखे हैं जहां पे स्टार्टअप्स अपने डायरेक्शंस को चेंज लेते हैं, उसको हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी इन द टर्मिनोलॉजी, कि वो अडैप्ट कैसे करते हैं अपना इन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ द मार्केट, कि अगर आज उस वो टेक्सटाइल में है तो कल लेदर में है, क्योंकि उसको टेक्सटाइल से इतने तरीके से एक तरीके से उसको या तो दे आर नॉट helping it to earn more revenue, or it is they are facing challenging to raise funds, and hence they are moving into new directions also. It is completely acceptable, it is good, and it because they are exploring new things, और वो उनको नए दिश उनको चाहते हैं कि नए चीजें एक्सप्लोर करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि AI ML और ऐसा चीज है जो हर एक जगह पे जा सकती है। आप एक स्पोर्ट्स मैच की बात करो, या आप हॉस्पिटल की बात करो, या आप एक पूरा डायरेक्टरी की बात करो, जैसे हमारे आधार कार्ड हुए हैं, या जो भी हमने आइडेंटिटीज गवर्नमेंट ने आज तक बनाई है, ये कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर AI ML हमारे पास नहीं रहता या टेक्नोलॉजीज नहीं रहते। बायोमेट्रिक्स की बात करो, अब जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, इवन तक कि आप रेलवे स्टेशन में रेलवे को मॉनिटर करने के लिए भी आप रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग लगा सकते हो थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजीज, राइट? तो ऐसे इससे कि हमारे एक्सीडेंट्स जो हमने अभी फिलहाल देखे हैं, 2-3 एक्सीडेंट्स बहुत भयानक तरीके के एक्सीडेंट्स हुए, इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो स्टार्टअप्स के पास टेक्नोलॉजी है, उनको इंडस्ट्री का वैलिडेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री की टेस्टिंग की जरूरत है। वहां हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे पास है, जुड़े हुए हैं PSA ऑफिस के थ्रू, करीबन 2000 के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट से हैं। IISER की बात करो, NITs की बात करो आप, या NIT CSIR की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो आप, ICER, तो वहां पे सारे ये लोग हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कोई ना कोई जर्नल्स लिखे हैं, अपने अपने एक्वलेट्स हैं, और हमने रेटिंग मैकेनिज्म्स भी डाल दिए हैं प्लेटफॉर्म में, ताकि इंडस्ट्री को आसानी हो और स्टार्टअप्स को भी इजी हो कि वो सिलेक्ट कर पाए कि किस तरीके के मेंटर्स चाहिए उनको, और इसके लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये गवर्नमेंट की ऑफरिंग है, ये निःशुल्क है अगर सीधी बात पे कहें। और इसके अलावा हम इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ काम करते हैं, जैसे USAID है, फेलोशिप प्रोग्राम्स करते हैं, वुमेन इन स्टेम में हम लोग EY स्टेम के थ्रू हमने खगोल चला डिस्कवरी प्रोग्राम किए हैं, एस्ट्रॉइड जिन्होंने 14 लड़कियां को हमने चुने हैं, उसमें से 3 लड़कियों को NASA में ट्रेनिंग कराने के लिए हमने भिजवा दिया है, तो वहां पे उनको सपोर्ट मिल रही है। प्लस अगर हम बात करें किसान के लिए, तो हमने किसान मित्रा हमने डेवलप किया है इसरो के थ्रू, और NABARD और हिंदुस्तान यूनिलीवर उसमें मिलकर काम कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर कृषि ऐप उन्होंने डेवलप किया, जिसमें कि वाटर टेबल, सॉइल, मॉइस्चर कॉन्टेंट, इन चीजों को कन्वर्ट करके किसानों की भाषा में, लैंग्वेज में उनको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस फॉर रेवेन्यू अर्निंग्स एंड मार्जिन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, एंड ऑल्सो कैन लिवरेज द FPO जो FPO उनको मिलता है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप मंथन प्लेटफॉर्म पर आओगे फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा।
2: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मंथन, आप कुछ बता सकते हैं?
1: हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसे सरकार ने बहुत सारे के प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो केवल R&D के ऊपर है। इंडिया CSR के भी पोर्टल्स हैं जो CSR है, लेकिन हर पोर्टल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर पोर्टल की अपनी अपनी कॉस्टिंग्स होती हैं, वो होती है। तो इस पोर्टल की खासियत ये है कि दिस हैज बीन डन ओनली थ्रू क्राउड फंडिंग, इंडस्ट्री सपोर्ट, नॉट गवर्नमेंट सपोर्ट। हमने गवर्नमेंट से कोई मतलब गवर्नमेंट हैज नॉट सपोर्टेड, इट इज इंडस्ट्री ड्रिवन, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है। इंडस्ट्री को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो, और स्टार्टअप्स को हेल्प करना, तो इंडस्ट्री को उनको बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसके वजह से हमारी जो फंडिंग है ये पूरी एक्ट ग्रांट्स, AWS और मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी जो कॉग्निजेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने अपनी वॉलंटरी फंडिंग दी है इस प्लेटफॉर्म को, और 15 अगस्त को पिछले साल हमने
2: इससे ये जो हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं
1: इसके सारे एंटरप्रेन्योर्स, और हम ऑलरेडी ऑनबोर्ड करते हैं इसमें। हमने कुछ टेम्पलेट्स डाले हैं जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स को इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट बता सकती है कि हम स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको फेलोशिप प्रोग्राम्स दे रहे हैं, और फेलोशिप्स और मेंटरशिप इसलिए क्योंकि हर एक जगह में रिसर्च फेलोशिप्स की जो बढ़ावा है इसको देने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ग्रास रूट इनोवेटर्स को ये नहीं पता होता कि वो उनकी यू नो या तो उनकी क्वालिफिकेशंस कम होते हैं या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, तो दैट सिक्योरिटी नीड्स टू बी देयर, राइट। अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हर एक चीज में सिक्योरिटी चाहिए इंसान को,
2: बिल्कुल।
1: सो इफ यू टॉक अबाउट वाटर सिक्योरिटी, आज की डेट पे दिल्ली में जो हम पानी पीते हैं वो भी सेफ नहीं है, राइट। आज की डेट पे अगर हम फूड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं FSSAI इसको कहीं ना कहीं पुश दे रहा है, फॉर एवरी अदर डे वी गेट टू सी न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो भी लाइसेंस्ड है। तो हर एक जगह पे अपने अपने सिक्योरिटीज की जरूरत है, और इसको मॉनिटर करने की जरूरत है, इसलिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जहां पे इंडस्ट्री आए और इक्वली सपोर्ट करे थ्रू इक्विटी फंडिंग और अदर मींस दैट दे कैन डू विद द स्टार्टअप्स।
0: तो बहुत अच्छा आपने बताया, हम मंथन पोर्टल के बारे में जरूर और जानकारी लेंगे। दो तीन चीजें जो आपने बहुत अच्छी बोली मुझे अच्छा लगा, एक जो मेंटरिंग का बताया, तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर सही गुरु और सही मार्गदर्शक किसी को मिल जाए तो वो उसको कहां तक लेके जा सकता है, कैसे उसे पार लगा सकता है, तो बहुत जरूरी ये चीज है। और यही मार्गदर्शन और मेंटर की फॉर्म में जो आज के टाइम में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत पॉपुलर है कि बहुत सारे मेंटर्स हैं, लेकिन कौन ऐसा मेंटर है जो सही मायने में आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाए और जो भी समस्याएं हमारे स्टार्टअप फेस कर रहे हैं इससे उन्हें पार लगा पाए और जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो उनके स्टार्टअप का एम है, जो उनका विजन मिशन है, वहां तक उनको सही तरीके से कैसे पहुंचना है, ये मार्गदर्शन अगर हम इस मंथन प्लेटफॉर्म के थ्रू और PSA के अलावा बाकी इनिशिएटिव्स के थ्रू अगर स्टार्टअप्स को मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात और स्टार्टअप्स के लिए नहीं हो सकती, और उसके लिए भी उन्हें कोई खर्चा नहीं करना है तो ये दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टअप्स हम सभी जानते हैं
1: ऐसे ही 500 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी उनको वो कर चुके हैं, हम उनको फंडिंग दे चुके हैं,
0: ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी स्टार्टअप्स हम जानते हैं उनके पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो फंड्स की लिमिटेशन होती है, अगर बहुत ज्यादा खर्चा उनको इसमें नहीं करना पड़ रहा, उन्हें वो सपोर्ट मिल रहा है, तो
1: और जहां हमारे पास जैसे एलन मस्क जैसे लोग हैं जिनके पास फंडिंग की कैपेबिलिटीज हैं और इतने यू नो इंटरनेशनल में इतने कुछ करते हैं वो, तो उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां पे उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया और वो कोहोर्ट्स बना रहे हैं। दो प्रोग्राम्स ऐसे मैं बता सकता हूं जो एलन मस्क की जो एक्सप्राइज फाउंडेशन है उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच किया है और उनको बेनिफिट मिला है, स्टार्टअप्स उन्होंने सिलेक्ट किया है। एक जो पहला चैलेंज था वो है डीकार्बनाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, तो उन्होंने ये चैलेंज हमारे प्लेटफॉर्म पर थ्रो की थी और बहुत सारे स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली अभी वो वाइल्ड फायर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अपने वाइल्ड फायर की इश्यूज देखी होगी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, ब्राजीलियन अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज हमारे फॉरेस्ट में कवर्ड होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अगर कुछ करना है, वाइल्ड फायर के लिए एक्शन लेना है, तो उन्होंने उसमें भी फंडिंग डाला है। तो ये करीबन कुछ नहीं तो अपने आप में 1500 करोड़ की बजट्स हैं जो बजट्स के थ्रू स्टार्टअप्स को,
0: तो ये सारी जो फंडिंग है ये मंथन पोर्टल के थ्रू सब स्टार्टअप्स को,
1: ये सारे स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स को जा सकता है मंथन पोर्टल के थ्रू, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की जो पोर्टल है वो भी इंटीग्रेटेड है अभी मंथन पोर्टल पे, और किस केवल ये नहीं, कितने जितने भी मंत्रियां हैं मतलब मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, वो सारे मंत्रालय के, जैसे जल शक्ति है या फिर आपके पंचायती राज बताओ आप, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करो, या कोल मिनिस्ट्री बोलो, सारे मिनिस्ट्रीज के जितने भी स्टार्स जी के ग्रुप पे तौर पे उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया अराउंड 215 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से करीबन 50-60 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर हैं जो केवल स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। इनफैक्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी है उसमें भी, आपको 5G 6G इन पे भी है, बहुत सारी चीजें।
0: तो ये तो और आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि जैसे आपने पहले बताया था कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जब भी कोई होता है तो वो कहाँ किस दिशा में जाएगा उसके लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने भी बहुत स्टार्टअप्स का काम करते हुए देखा है कि आपने पहले क्या किया है वो इतना जरूरी नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन कोई भी स्टार्टअप किसी भी एक बिजनेस से डिफरेंट कैसे होगा, तो जब तक वो किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा जो बहुत लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करती है, बहुत जगह पर है, और अगर उसको वो सॉल्व कर दे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आ सकता है या उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर आना ही, ये खासकर जब हम युवाओं से बात करते हैं, स्टूडेंट्स हमारी शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम होती है कि मैं किस फील्ड में काम करूं। उनके पास पैशन है, वो काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाऊं जिसको सॉल्व करने से मेरा एक स्टार्टअप, एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप खड़ा हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंथन पोर्टल से आ रही है तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को उस मंथन पोर्टल पर जरूर जाना चाहिए और आप जाकर वहां देखें, वहां से आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी, बहुत से ऐसे नए आइडियाज मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वहां पे हैं जो आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रद्धा मैडम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा, हमारे स्टार्टअप्स जब, खासकर जो यंग युवा हमारे हैं, ये जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इन्हें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टीम बिल्डिंग की, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो कोई एक आदमी अकेला नहीं चला सकता, आपको एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम में भी आपको मल्टीपल क्वालिटीज चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटीज हैं जो आप लोगों ने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम किया होगा या ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया होगा जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया और फिर आगे वो बढ़ते चले गए, थोड़ा सा इन स्पेशल क्वालिटीज के बारे में हमें बताइए जो किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करने में मदद कर सकती है।
2: तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले आपका जो है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस, आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपका जो आइडिया है वो कितना, उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो उस वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आपका एक जो टीम बिल्डिंग है वो अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का जो, आपके साथ जो लोग काम करना चाहते हैं वो आपके ही लाइक माइंड के होने चाहिए, मींस लाइक माइंडेड पीपल्स जो अगर होंगे, यू आर सराउंड विद लाइक माइंडेड पीपल्स, तो उससे क्या है कि आपका आइडिया और उभर के सामने आए,
0: एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं।
2: तो इसमें एक चीज तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है टीम बिल्डिंग। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो अगर हम देखें, हम जब साथ में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो हर कोई अपने अपने पॉइंट्स लेके आएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो और भी अच्छा होगा बजाय हम अकेले कुछ करें। तो एक तो हो गया टीम बिल्डिंग, दूसरा हो गया सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में जब हम बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई आइडिया को लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी जो चॉइसेस हैं, आपने क्या चूज किया है, आपकी टीम कैसी है, आपके टीम के लोग कैसे हैं, उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर कैसा है जो कि आपके स्टार्टअप में हेल्प करें, तो वो जरूरी है, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपके डिसीजंस को हेल्प करेंगी बनने में। और कभी भी कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है, क्योंकि आपने जब कोई डिसीजन लिया होगा तो वो डिसीजन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सही होगा। कभी कभी टाइम सही नहीं होता है बट डिसीजन सही होता है। तो कभी भी डिसीजन से बैकआउट नहीं करना है कि हमने डिसीजन लिया, नहीं नहीं वो गलत हो गया, तो ये नहीं सोचना है। तो इसके लिए आपको एक इनर मोटिवेशन हमेशा रखना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको आपके टीचर्स, फैकल्टीज और आपके बड़े सभी लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं, बट जब तक आपका इनर मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा।
1: बेसिकली जो स्टार्टअप्स में एक बार एक बात, क्योंकि आप इस पे चर्चा कर रहे हैं तो मुझे एक बात कहना होगा इसमें कि अगर हम स्टार्टअप्स बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टअप्स शुरू होती है वो शुरू होती है आइडिएशन से। आइडिएशन जो है, जो कह रहे हैं मैम कि आइडिया है, एक आइडिया, आपको ये नहीं सोचना है कि ये आइडिया अच्छा है या बुरा है या किस तरीके
2: exactly.
1: अगर आप खुद ही उस आइडिया को, मतलब आप अगर खुद आइडिया को यूज करते हो मैं अगर कुछ भी एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक टू बेसिक चीज, अगर आप मतलब पैडमैन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन में उन्होंने खुद ही अपने आप को उस शूज में डाल के उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया
2: impact
1: और उसके इम्पैक्ट की, सोशल इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है, क्या कहां जा, क्योंकि उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगी कि क्या ये कमर्शलाइज हो पाएगा, वो तो इंडस्ट्री की बात है. ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये आइडिया पुट करने के लिए अगर आपको कोई, हो सकता है 10 में से 9 आदमी सुने ही ना, इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया खराब है. आपका आइडिया को जो है आपको करेक्ट लोगों से करेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो ये कह रहे हैं कि अगर आप सही लोगों को नहीं चुनोगे तो आपका जो है टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा. एंड टुडेज, इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली इन अ वुका वर्ल्ड, टाइम इज मनी. तो इसका जो है, आपका नेबर्स हो सकता है, आपका कजिन्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी, रिलेटिव, डोंट हेजिटेट टू आस्क और अप्रोच एनीवन. इफ यू आर रियली प्लानिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, यू शुड टॉक टू मल्टीपल पीपल. इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप शेयर भी कर सकते हो. सब मतलब सुनना सबका है, करना अपना है.
0: ये बहुत अच्छा आपने बताया.
2: ये 3 पॉइंट्स और थे जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो जैसे कि सर ने बताया कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अपने हर डिसीजन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके अंदर एक कुछ करने की इच्छा होगी कि हाँ, क्योंकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा करके दिखाना है, मेरी टीम को अच्छा बनना है. तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी एंथुजियास्टिक और इम्प्रूव योर नेटवर्किंग स्किल्स. आजकल लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं और बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये एनफ नहीं है.
1: लिंक्डइन,
2: हाँ, ये एनफ नहीं है. लिंक्डइन के थ्रू भी आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, वहां पे आपको कई सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो जिनसे आप कनेक्ट होंगे, जिनसे आप बात करेंगे, जिनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है. दूसरी चीज, जब आप सपोर्ट ले रहे जा रहे हैं तो ये टू वे, एक तरह से टू वे स्ट्रीट है. तो उसमें आप सपोर्ट दे भी रहे हैं और आप सपोर्ट ले भी, मतलब आपको सपोर्ट मिल भी रहा है आप, और आप भी सपोर्ट किसी को दे. तो यू हैव टू एक्सचेंज द आइडियाज. तो नेटवर्किंग स्किल्स इम्प्रूव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का. और अगर लास्ट पॉइंट देखें तो लास्ट पॉइंट आपका है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर. क्योंकि बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो स्टेप, किसी ना किसी स्टेप पे आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, तो उसी फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह मान के आगे बढ़े. अब जैसे कि थॉमस एडिसन का एक कोट था, उसने कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड. जो उसने लाइट बल्ब बनाया था उससे पहले तो उसने ये बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज नॉट टू ट्राई. 10,000 वेज जो है उनको ट्राई नहीं करना है, उसने वो फाइंड करा, बजाय इसके कि वो इसको फेलियर माने. तो लाइट बल्ब
1: इन्वेंट हुआ,
2: हाँ, करेक्ट फॉर्मूला. तो हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हम देखेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं.
0: बहुत अच्छा आपने कहा. हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपने सुनो शादा FM के श्रोताओं के साथ दोबारा जल्दी जुड़ेंगे.

0: मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सुनो शारदा से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोतागण। और हम स्टार्टअप चर्चा सीरीज में आज उपस्थित हैं हमारे अतिथियों के साथ, सोमिल मुखर्जी जी और मैडम श्रद्धा अवस्थी जी के साथ। तो मैडम, मैं अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने जो बात की, आपने बहुत अच्छी कुछ चीजें बताई कि फेलियर एक ऐसा पार्ट है जो हर एक स्टार्टअप जर्नी के अंदर एक रहता ही है और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फेलियर से हमें रुकना नहीं है, हमें उससे सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। क्या नहीं करना है वो जानना है और आगे क्या अलग करना है वो हमें उससे जानना है। और एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई थी, जैसे ऐसा माना जाता है और मैं भी ये मानता हूं कि जानकारी की और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, हमेशा आपको जानते रहना है, नया नया सीखते रहना है। तो एक वर्ड आपने आज मुझे नया बताया कि टीम की फुल फॉर्म भी कुछ होती है। मैं चाहूंगा हमारे सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं के लिए आप एक बार फिर से बताएं जो टीम के बारे में आपने बताया था कि टीम एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इस वर्ड का।
1: टीम का मतलब जैसे हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं कुछ टास्क को या प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हम जो है सोचते, अकेले तो एक आइडिया जनरेट हो नहीं सकता, मतलब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें एक टीम बनानी होती है। तो बेस्ट जो लोग हो, मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, तो उनको हमें कनेक्ट करना होता है। तो उस कनेक्शन से क्या होता है कि हमारा जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी और बेहतर होता है। तो टीम का मतलब ही यही है, जैसे आपने फुल फॉर्म पूछा तो टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो हर किसी की क्योंकि क्वालिटी है तो हर कोई एक साथ मिलके उस अपनी ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है।
0: तो मतलब मैं इसे अब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक और एक मिलके 11 बनाना है, एक और एक दो नहीं करना है, हमें एक और एक 11 बनाना है। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। स्वामी जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहूंगा। मंथन पोर्टल पर, जैसे मैं खुद भी उसका यूजर हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए उस पे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स आती रहती हैं, तो किस तरह से आप इतने सारे इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं, इन सबको आपने जोड़ा है और कैसे इसमें स्टार्टअप्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं और क्या नया इसमें कुछ आने वाला है, आप हमें कुछ जानकारी दें।
2: जी, तो देखिए, मंथन पोर्टल जो है ये बेसिकली जो है नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज डिसेमिनेशन और आइडियाज की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, जो स्टार्टअप्स या ग्रास रूट इनोवेटर्स से आती है। तो इसके लिए हम डिमांड साइड की बात करें, अगर हम डिमांड, हम दो तरीके के काम करते हैं। एक तो डिमांड साइड जो कि डिमांड ड्रिवन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया एग्जांपल्स पहले आपको, स्टेट गवर्नमेंट या ग्लोबल फाउंडेशंस या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज, सोशल एंटरप्राइजेस, कई तरीके के ऐसे हैं जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं मंथन प्लेटफॉर्म पर, कि उनकी सीएसआर की रिक्वायरमेंट है, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करना है या उनको मार्केट रेडी की चीजें चाहिए। और हमारे एक तरीके, दूसरे तरीके स्टार्टअप्स और इको एमएसएमईज और एनजीओज, फिर अपने जो भी है इनक्यूबेटर्स, फिर अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की बात करें, जो जोधपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और भुवनेश्वर जैसे शहरों में ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश्ड है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी जो है वो रिव्यू करती है उसको। ये सारे सप्लाई साइड के पिलर्स हैं हमारे। तो हम क्या करते हैं, हम इनके प्रपोजल्स जो है, जो इनोवेशंस हैं स्टार्टअप्स, 80,000 स्टार्टअप्स और जितने भी हैं टोटल, इनके हम सारे प्रपोजल्स को शोकेस करवाते हैं। दिस इज एन फ्री अपॉर्चुनिटी कि इनकी प्रपोजल्स जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे शोकेस हो सकता है। तो आपको केवल उसमें टाइप करना है कि आपको एथेनॉल के व्हीकल्स की सिमुलेशन चाहिए या आपको उसकी नॉलेज बनाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स बनाने, तो उसका आपको सर्च करना है उस प्लेटफॉर्म पे और उसके अंदर आपको 10 प्रपोजल्स दिखेंगे।
0: मतलब इस पे ना सिर्फ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रही है बल्कि जिन लोगों ने उसमें काम कर लिया है तो वो भी हमें इसका सोल्यूशन भी वहीं पर मिल जाएगा,
2: सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वो सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी एमओयू साइन हो गया और वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो निमैंस करके एक जो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो टेली मेंटल हेल्थ की प्रोजेक्ट है, उनको हमने अभी फिलहाल ही दो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं फैसिलिटेट। एक लोएज है जो एमएनसी है पीएफएसआई सेक्टर में, वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिमेंशिया डिजाइन स्टूडियो जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं प्लस सिजोफ्रेनिया करके जो डिजीज होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है एंड ये अनडिटेक्टेबल होती है बीमारियां, ये डिटेक्ट नहीं होती है इजिली बिकॉज इनके डायग्नोसिस करने वाले जो डॉक्टर्स उनको पास भी ये टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो किस तरीके से हम इसको रिहैबिलिटेशन और इसको इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके फैसिलिटेट करके एक स्टूडियो बना सकते हो, एक फैसिलिटी बना के उनको सपोर्ट करने के लिए हमने फंडिंग दिया है। निवेंस उस पर काम कर रही है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करवाते हैं थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन हैं। तो ये इस तरीके के सारे आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इंडस्ट्री खुद आके बताती है। इस तरीके के PSUs हो गए, तो PSUs में जैसे आप अगर BPCL की बात करें या HPCL की बात करें, गेल की बात करें, सेल की बात करें, ये सारे नवरत्नाज हैं और इनके पास जितना भी इनकी CSR और R&D एक्सपेंडिचर होती है तो ये अपना जो डाइवल्ज जो स्पेंडिंग जो पैटर्न है हम देखते हैं कि CSR स्पेंडिंग में भी पैटर्न की अनयूटिलाइजेशन होती है क्योंकि वो स्पेंड ठीक तरीके से कर नहीं पाते। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको या तो उनका मतलब इशू हो जाता है या तो उनका डायरेक्शन आता है कि PM केयर्स फंडिंग में ट्रस्ट करना है, उनको हॉस्पिटल बिल्ड करने है। अगर हम उनको ये बताएं कि अगर आप उसी कॉस्ट के या हाफ ऑफ दैट कॉस्ट पे आप केवल 50 स्कूल में टॉयलेट्स बनाने के जगह आप उसको बायो टॉयलेट्स बनाइए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, साथ साथ सस्टेनेबल भी कर पाएंगे और वो भी कम कॉस्ट पे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जो भी क्रेडिबल है और उसका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का सिनेरियो।
0: जरूर, मुझे लगता है हमारे देश में इतने सारे यंग इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और ये सभी इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग बहुत सारा अपना एक समय पैसा फंड्स के ऊपर लगाते हैं, रिसर्च के ऊपर लगाते हैं।
2: जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे जितने भी नवरत्नास हैं हमारे इंडिया में, इंडियन ऑयल, गेल, सारे PSUs को मैंडेट कर दिया है नीति आयोग ने, गवर्नमेंट ने, कि हर एक PSU के पास अपना R&D और इनोवेशन का सेल होना चाहिए। शायद आपको पता हो इंडियन ऑयल के पास ऐसे फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं फरीदाबाद में जहाँ पे उन्होंने 5 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी बनाए हैं, सेमी कंडक्टर पे, करोशन पे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी और भी बहुत सारे जो डायरेक्टली हो सकता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें और इसमें भी स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी अहमियत रोल है कि वो अपना जितना ये जितने भी सेंटर्स क्रिएट होंगे इन सबको वो इंक्यूबेट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गाइडेंस मिल सकती है। ये PSUs हमारे पास आके ये बताते हैं कि ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन लोगों ने हमें इन सारे जितने भी अफिलेटेड कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट रिकमेंडेशन लेटर्स भेजे हैं मंथन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइजेशन करने के लिए, इनके R&D और इनोवेशन को सॉल्व करने की जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो ये PSUs के पास जितने भी फंडिंग्स अनस्पेंट बजट्स हैं वो इस तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी CSR MCA रूल्स के दौरान हमें ये भी पता है कि जो भी CSR की फंडिंग है वो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और जो ICRs और जो भी लैब्स हैं इन सब इंक्यूबेटर्स को सबको जा सकता है और इसमें R&D इनोवेशन को भी कर सकता है क्लॉज 9A के अकॉर्डिंगली।
0: तो ये जितने भी PSUs हैं इन सबके जो इनोवेशन सेंटर है तो मंथन पोर्टल के थ्रू इन तक पहुंचा जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हमें इतनी सारी जानकारी एक ही पोर्टल पे मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धा जी, मैं थोड़ा सा आपसे को फाउंडर्स और हमारे स्टार्टअप टीम बिल्डिंग के बारे में और जानना चाहूंगा।
1: जी।
0: आप हमारे सुनो शारदा FM के श्रोताओं को अगर बताएं कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम जो स्टार्टअप फेस करते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी वो टीम के साथ वो काम करते हैं और बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, और कैसे वो आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और इसके लिए स्टार्टअप्स को और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपका जो डिसीजन है, मेन तो डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये ना कि हाउ टू फाइंड अ राइट को फाउंडर, अगर हम देखें तो आपका जो कहने का मतलब है वो शायद यही है। तो एक अगर आपको को फाउंडर चाहिए, बिकॉज अकेले तो कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता, मतलब यू हैव टू मेक अ टीम फॉर दिस। तो इस टीम को बनाने के लिए आपके को फाउंडर चाहिए। आपको को फाउंडर के लिए अगर आपको मतलब आपके रिक्वायरमेंट और अच्छा को फाउंडर चाहिए, परफेक्ट को फाउंडर चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो जब आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तब आप जाके आपको क्या चाहिए वो आप जानते हैं। मीन्स आपको अपने को फाउंडर में क्या चाहिए वो वही चाहिए होगा जो कि आपके में नहीं है, अब यही सोचेंगे, तो आपके अंदर जो क्वालिटी नहीं है आप अपने को फाउंडर में चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी उसको आती हो या वो इनोवेटिव स्किल्स हो उसके अंदर या वो नॉलेज हो
0: KSA, जैसे कि अगर मैं टेक्निकल से हूँ तो मुझे शायद कोई मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए तो मेरी मार्केटिंग को हेल्प, जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर
1: पाऊंगा, हाँ जो डिजिटल में अच्छा हो तो डिजिटल मार्केटिंग वाला हो और जो राइटिंग में अच्छा हो तो वो मतलब एक्सप्लेन कर सके कि हाँ कैसे कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करे, इस तरीके के, तो ऐसे आपको लोग चूज करने हैं। तो परफेक्ट को फाउंडर के लिए तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, फिर आप वो ऐसा पर्सन चूज करिए जो आपके गैप्स को फिल कर सके, मेन है टू फिल दोज गैप्स जो आपके अंदर नहीं है, तो इसी तरीके से एक टीम डेवलप हो सकती है। और फाइंडिंग अ को फाउंडर, राइट को फाउंडर इज जस्ट लाइक फाइंडिंग अ बिजनेस सोलमेट, तो इट विल टेक टाइम, टाइम लगता है कई बार लेकिन वर्थ है। तो मतलब कई बार क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के इन्वेस्ट हमें करना चाहिए कि हमें आगे इसका लॉन्ग टर्म जो है फायदा मिलेगा, तो इसी तरीके से ये है कि आप करिए तो अच्छा,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाले अगर को फाउंडर होंगे तो अपने आप बहुत सारे
1: काम आसान होगा, काम कम टाइम में, मीन्स टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी इसी को कहते हैं कि आप अपने काम को असाइन करें अपने टीममेट्स के साथ, आप ही अगर सारा काम करेंगे तो आपके टीममेट्स क्या करें, फिर कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ तो फिर प्रॉफिट भी मुझे ही मिलना चाहिए, तो इसमें क्या है?
0: बहुत अच्छा आपने कहा, हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम आती है फिर एक, हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे जाकर फिर डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं आपस में,
1: अगला टीम ब्रेक होती है, टीम मेंबर भी कहता है कि यही करने देते हैं इसी को, जब हमें क्या करना, हम तो हैं टीम मेट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये है, तो उसमें क्या है कि एक पे आता है सारा बर्डन भी आता है, स्ट्रेस भी होता है, और उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है,
0: कहीं ना कहीं वो एहसास होता है कि मैंने शायद गलती कर दी है टीम बनाकर,
2: इसी बात शुरू से कुछ कहना चाहता हूँ,
1: तो वही डिसीजन फिर आ गया ना, डिसीजन मेकिंग।
2: जी मैं मतलब बिल्कुल सही बात पे चर्चा हो रही है, और ये सबसे बड़ा अहमियत, सबसे मेन, मतलब मैं अगर बोलूं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है तो वो यही है कि नेसेसिटी ऑफ इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जो आइडिया मैंने पहले बोल रहा था तो उसमें क्या है कि आपको काफी रिसर्च करने की जरूरत है। एक तौर पे अगर आप एकदम से आपको सपना आया और बोला कि आप मैं कल ऐप बनाने को तैयार हूँ, सारा स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि केवल एप्स बनाने से ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, केवल ऐसा नहीं है, और स्टार्टअप्स का मतलब ही एप्स होता है, एप्स इज नॉट इक्वल टू स्टार्टअप्स,
0: बिल्कुल,
2: तो इसमें बहुत रिसर्च और बहुत सारे इंटरेक्शंस की जरूरत है ताकि आपको नॉलेज पता चले। उसमें भी मंथन प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उसमें व्हाइट पेपर्स हैं, एविडेंस बेस्ड चीजें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो KPMG के साथ हमारी पार्टनरशिप है,
1: जिससे केस स्टडी करके,
2: फिर आप उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो आगे, देन वो कंसेप्चुलाइजेशन से अर्ली स्टेज जा सकता है, ऐसे मूवमेंट होती है क्योंकि आप यहीं पे, आप आधे से ऊपर डुप्लीकेट से आप यहीं पे आपका मतलब जो बैटल है एक तरीके से आप यहाँ पे तो उसको खत्म कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को अपने अंतिम दौर में ले जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे।

0: सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हम स्टार्टअप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने अतिथियों के साथ सौमिल मुखर्जी जी और श्रद्धा अवस्थी जी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम दौर में हैं। और श्रद्धा जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। जैसे बुक्स हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा साथी होता है, तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज रेफरेंस के बारे में बताइए जहां से उनको कुछ और जानकारी मिल पाए, वो मोटिवेशन ले पाए और ज्ञान ले पाए, या कुछ ऐसे और नए कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम शुरू करने वाले हैं शारदा में, या आपकी संस्था है, आप कुछ और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें।
1: जैसा कि सर ने कहा कि बुक जो रिकमेंड करनी है, जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या जरूरी है, नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जो है आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। आइडियाज हैं, सपोर्ट है, गाइडेंस है, तो ये सारी चीजें आपकी नेटवर्किंग से बहुत अच्छी हो सकती है। आप का जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हो सकती है। यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल्स। तो टू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल्स, तो आपको एक बुक रेकमेंड करूंगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
0: तो और जल्दी से दो लाइनें बस, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आप एक स्वरक्षिका शायद एक अभियान से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ जी, मैं एक संरक्षिका वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारे CISF ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ संरक्षिका की। तो उसमें हम कई सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं वुमेन रिलेटेड टू वुमेन वेलफेयर और चिल्ड्रन वेलफेयर। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो उन आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरीके से इनिशिएटिव है। अभी हम जो है विद पैप्सवैप एंड स्टार्टअप हब यूपी स्टार्टअप के साथ जो है हम एक प्रोग्राम शुरू करना जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। तो उस प्रोग्राम का नाम जो है वो है फ्रॉम बाउंस बैक टू कम बैक। तो कैसे हम अपने स्टार्टअप को हम जो फेलियर हो जाते हैं या जो जिनको आइडियाज नहीं मिल पाते हैं, उनको कैसे हम फिर से आगे बढ़ाएं, कैसे हम आगे अपने स्टार्टअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम शारदा में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप प्लीज ज्वाइन करिए। ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन।
0: तो बहुत अच्छा रहेगा अगर किसी ने इस डायरेक्शन में काम किया और वो रियली पैशनेट है और किसी वजह से वो अपने पहले इनिशिएटिव में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो जरूर उसे मदद मिलनी चाहिए कि वो दोबारा से कोशिश करे, दोबारा से खड़ा हो और वो आगे सक्सेसफुल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस के लिए। सौमिल जी, मंथन पोर्टल और PSA से कुछ नई जानकारी जो आने वाली है, जो कुछ जिसे हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, आप बता पाए ताकि हमारे श्रोता और बाकी यूनिवर्सिटी के लोग उसके लिए तैयार रहें।
2: काफी चीजें हैं, कुछ साइंस और कम्युनिकेशन को कि हम जो ब्रांडिंग की बात करते हैं या आउटरीच की बात करते हैं, इससे हम कई सारे एक्टिविटीज करते हैं जो हम पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के साथ हमने किया है, नेटफ्लिक्स अपना आजादी की अमृत कहानियां के लिए उनकी जो मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने क्लाइमेट इनोवेटर्स के लिए 25 एपिसोड्स बनाने के लिए बताया था जो उनका विजन था। तो उसमें से हमारे ऑफिस में पहले के दो सीजन से अभी थर्ड सीजन चल रही है, उसकी प्रोडक्शन है। उसके लिए अभी हमारे प्लेटफॉर्म से ऑफिस ऑफ PSA से हमने कुछ 10-11 स्टार्टअप्स की इनोवेशन चूज किया है, एडुकेशन से, रिसाइकल से, देश के अलग अलग जगहों से हमने सोर्स किया है और उनको हमने सबमिट किया 50-60 इनोवेशन। उसमें से वो 10-11 इनोवेशन वो गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाएंगे। ऐसे ही और अमेजन प्राइम के साथ अभी हमने सॉफ्ट मीडिया लॉन्च इन्वाइट किया है, तो उसमें ग्रासरूट इनोवेटर्स की जो स्टोरी है क्या चीजें उनकी जरूरत होती है मेंटरशिप की, जो हम बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आती हैं, उसकी शोकेसिंग के लिए उन्होंने 10 स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं और वो इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे डायरेक्टली और उसके ऊपर रियलिटी सीरीज आएगी। ऐसी DD किसान के ऊपर से भी जुड़ा हुआ हमारा IFFCO की जो फंडेड प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ 16 एपिसोड्स जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके का टेक्नोलॉजीज यूटिलाइजेशन होते हैं, प्लस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ भी हमारे टाई अप्स है बी इंस्पायर्ड साइंस कम्युनिकेशन सीरीज के लिए। अगर आपके जितने भी स्टार्टअप्स हैं आपको इंडिया साइंस फेस्टिवल में वेलकम है जो बेंगलोर में 10 से 12 अगस्त के लिए है। अगर आपको जुड़ना है आप केवल मंथन प्लेटफॉर्म पर जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल पर, तो हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। दे आर फ्री टू रजिस्टर एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले इनोवेशंस आल्सो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ रही है, उसके सोल्यूशन भी आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम भी आ रहा है, और जो लोग काम कर चुके हैं उन्हें आगे कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, जानकारी उसकी कैसे सबको मिले, तो सभी चीजें एक ही जगह से मिल रही है, तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा किसी के लिए।
2: मार्केटिंग की बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल, ये तो अब माना ही जाता है कि अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो जानकारी जब दूसरों के पास जाएगी तो वो और लोगों को मोटिवेट करेगा, और उसके खुद के लिए भी मोटिवेशन ही होता ही है। वो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे अतिथियों का, आपने अपना समय निकाला और आज यहाँ पर आए शारदा यूनिवर्सिटी में, और सुनो शारदा FM के हेल्प से हमने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पैप्सो ऐप कंपनी का, दिव्यांशु जी का, जिनकी मदद से हम आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं इस स्टार्टअप चर्चा श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए हम बहुत जल्द फिर से उपस्थित होंगे और विशेष अतिथियों के साथ। सुनते रहिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सुनो शारदा FM के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप चौराहा। इस स्टार्टअप चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे सौमिल मुखर्जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरे गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, PhD इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड NLP कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका, द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ CISF ग्रेटर नोएडा यूनिट, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी। आशा करता हूँ ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। वक्त है आपसे अनुमति लेने का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। Sharda School of Media, Film and Entertainment, Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।